कई बार अक्सर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल, पर मेहनत जरूर रंग लाएगी। हौसलों को जरा संभाल के रखो, हर कोशिश काम आएगी। थोड़ी देर भले ही लगे राहों में पर मंजिल करीब आ जाएगी। इम्तिहानों की अंधेरी रात के बाद जीत की सुबह मुस्कुराएगी।

काली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो।

समंदर की लहरें बताती हैं कि लौटकर फिर उठना ज़रूरी है, हर बुझती हुई उम्मीद को फिर से जगाना ज़रूरी है, मुश्किलें चाहे कितनी आए हौसला बचाना ज़रूरी है, मंजिल खुद पास आ जाएगी, बस चलते जाना ज़रूरी है।

दोस्तों, इंसान भी अगर बीते हुए कल की निराशा को छोड़कर आज की शुरुआत मुस्कान से करे तो जीवन आसान हो जाता है। जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है तो उसके दिल में शिकायतों की जगह खुशियां अपने आप आ जाती हैं।

देखते ही देखते आज की ये भोर सुहानी की सुबह अपने सुनहरे रंग आपके जीवन में बिखेर गई। उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई मुस्कान और नई सफलताएं लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नए विचारों और मधुर गीतों के साथ। नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో స్టూడియో క్లాక్లో సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరి కాసేపట్లో హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే నవీన్ సక్సేనా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता. उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था. उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है.
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे. मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है.
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है. उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है. टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे. यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे. मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा. स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है. 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक

0: और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहेम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying that they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram. The new Greenfield Airport has been built under the public-private partnership mode at the cost of over 5,600 crore rupees. The Prime Minister will lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Visakhapatnam. It is Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility approved under the India Semiconductor Mission. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru in Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Vivek Smarak. Social media company Meta's global team, which has been summoned by the center after it restricted Prime Minister Narendra Modi's Facebook post, will be questioned on issues around algorithm bias and their role in public order. Official sources told Akashvani News that Meta's global team is expected to be questioned sometime in the middle of the next week. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious serious injuries.

0: స్టూడియో క్లాక్లో సమయం 7 గంటల 30 నిమిషాలు అవుతుంది. మరి కాసేపట్లో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 సంబంధించిన రేడియో రిపోర్ట్ వింటారు.
1: Witness to India's medal-winning exploits in judo and athletics.
2: खेलों के 90 दिन भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर था और भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दम खूब दिखाया. अपने दमकते प्रदर्शन से पदकों की संख्या बढ़ाई और साथ ही और तमाम पदकों की आस भी जगा दी. देशवासियों को गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर दे दिया. अब जब खेलों ने अपने समापन की ओर बढ़ने का सफर आरंभ कर दिया है, भारतीय एथलीट इस समय अपने प्रदर्शन को शिखर पर ले जाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं. पदकों की झोली जितनी भारी हो सके, उत्साह, उल्लास, गर्व और आनंद होने के क्षण उतने ही ज्यादा. बॉक्सर्स ने तो कमाल कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक धमाकेदार जीत दर्ज कर फाइनल में एंट्री ली. एथलेटिक्स में हमारी आंखों के तारे नीरज चोपड़ा तो थे ही और उनके और साथी भी मैदान में थे. इसके अलावा भी बहुत कुछ था, तो चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर. 9वें दिन का पूरा लेखा जोखा.
1: It was a memorable day for India in boxing and judo, but with javelin action scheduled later in the day, the spotlight, even in our show, is understandably on Neeraj Chopra.
2: जेवलिन थ्रो की स्पर्धा बहुत कांटे की होने वाली है, ये बात तो क्वालिफाइंग चक्र में ही तय हो गई थी. नीरज चोपड़ा, श्रीलंका के रुमेश थरांगा, अरशद नदीम और पीटर्स एंडरसन, कई सितारे थे मैदान में. डबल ओलंपिक पदकधारी, एशियाई चैंपियन और भी न जाने कितने खिताब. नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो 80.97 मीटर फेंका, दूसरा थ्रो 85.83 फेंक दिया, जो इस सीजन में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन. लेकिन थरांगा ने 89.75 मीटर भाला फेंक दिया. इसके बाद नीरज ने अतिरिक्त ताकत भरने की कोशिश तो की, लेकिन अंतिम दोनों थ्रो उनके फाउल हो गए. नीरज दूसरे स्थान पर रहे, रजत पदक. लेकिन साथ में तारीफ कीजिए जयपुर के यशवीर सिंह की. कभी बांस के भाले से सीखने की शुरुआत करने वाले और नेशनल लेवल के जैवलिन थ्रोअर पिता के लायक बेटे यशवीर ने अपने अंतिम प्रयास में पूरी ताकत लगा दी और 85.41 मीटर दूर भाला फेंक दिया, उनके करियर का सबसे अच्छा थ्रो. और इस थ्रो ने उन्हें बैठा दिया तीसरे स्थान पर, यानी रजत पदक और कांस्य पदक दोनों भारत के हिस्से में. एथलेटिक्स में डेकाथलॉन स्पर्धा बहुत कठिन स्पर्धा मानी जाती है. भारत के तेजस्विन शंकर को यही स्पर्धा पसंद है.
3: मैं ऐसे चैलेंजेस को हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ कि नए नए चैलेंजेस मैं ऐड कर सकूँ और थोड़ी एक्साइटमेंट आए मेरी खुद की परफॉर्मेंस से. कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा गोल ही रहेगा कि डिकैथलॉन इवेंट में कंपीट करना, क्योंकि वो सबसे टफेस्ट इवेंट होता है ट्रैक एंड फील्ड का. 2 दिन आप कंपीट करते हैं.
2: तेजस्विन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा पहले सत्र में. पोल वॉल्ट खत्म होते समय वे 4थे स्थान पर सरक गए. जेवलिन के बाद एक बार फिर तीसरे स्थान पर आ गए और 7,976 अंक, आप इसको बुरा तो नहीं कह सकते. और ये अंक उनको तीसरे स्थान पर लाने के लिए पर्याप्त थे और साथ ही कांस्य पदक उनका हो गया. 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भारतीय दल अंशा बाबू, रशदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश हीट नंबर 2 में 4थे और कुल मिलाकर 7वें स्थान पर आए और अंतिम 8 में यानी फाइनल्स में जगह बनाने में सफल रहे. वहीं 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में संतोष कुमार टी 50.37 सेकंड के साथ 7वें और यशाश पलाक्ष 8वें यानी अंतिम स्थान पर रहे.
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडोकास के लिए 31 जुलाई की शाम ऐतिहासिक रही, जहां अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने अपनी अपनी कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स हासिल किया. यामिनी मौर्य ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जिससे जूडो कंपटीशन के पहले ही दिन भारत को 3 मेडल्स मिल गए. अस्मिता ने विमेंस 48 kg कैटेगरी में इतिहास रच दिया. फाइनल में कैनेडा की हेडी क्वाश के खिलाफ खेलते हुए उनका मैच काफी कठिन रहा और गोल्डन स्कोर तक गया, लेकिन अस्मिता ने इस निर्णायक मोड़ पर अपने नर्व्स को होल्ड किया और इस वेट कैटेगरी में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड पक्का कर दिया. साउथ

0: त्रिपुरा के बिलोनिया की रहने वाली 23 साल की अस्मिता के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक बाइसिकल मैकेनिक की बेटी अस्मिता पहले 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेती थी, जिसके बाद उन्हें जूडो से जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्मिता का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। 2026 एशियन चैंपियनशिप्स में 5वां पोजीशन हासिल करके उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि वो एशिया के सबसे बेहतरीन जूडो खिलाड़ियों से भी मुकाबला कर सकती हैं। ग्लासगो में उन्होंने इसी उम्मीद को कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड में बदल दिया। इसके बाद हर्ष सिंह ने मेंस 60 केजी कैटेगरी में भारत के लिए जूडो में दूसरा गोल्ड अर्जित किया। इस प्रतियोगिता से पहले उन्होंने टोक्यो और ताशकेंट ग्रैंड स्लैम्स और एशियन चैंपियनशिप्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से अच्छा अनुभव हासिल किया था।
1: बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। मेडल अपनी माँ को डेडिकेट करूंगा मैं।
0: इसके अलावा यामिनी मौर्य ने विमेन 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीतकर भारत को तीसरा मेडल दिलाया। फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टोपरा के खिलाफ यामिनी ने कड़ी टक्कर दी जो गोल्डन स्कोर तक गई, लेकिन अंत में इंग्लिश खिलाड़ी ने पेनल्टी के जरिए जीत दर्ज की। उनका यह ग्लासगो सिल्वर उनके पदकों के संग्रह में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय मेडल जोड़ता है।
2: ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने कमाल के मुक्के बरसाए हैं। 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल चक्र में पहुंचे। जो भी भारतीय बॉक्सर रिंग में उतरा अपने मुक्के हवा में लहराता हुआ जीत का निशान बनाता ही रिंग से बाहर आया। और शुरुआत की 22 साल की प्रीति पवार, जिनके सामने थी जाम्बिया की कैथरीन मुआबे। बेतरह मुक्कों की बरसात में कैथरीन का सारा प्रतिरक्षण बहसा गया। 5-0 से जीत हासिल कर भारत का दिन का खाता खोला। 80 किलोग्राम में थे अंकुश पंघाल, कनाडा के जोशुआ ओफुरी के विरुद्ध पहले राउंड से ही धावा बोल दिया और तीनों राउंड में लगातार हावी रहे। 5-0 से एक और आसान जीत। तो भला राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी क्यों पीछे रहती? उन्होंने वेल्स की रोजी इक्लेक्स को परास्त किया। अरुंधति ने 4-0 के निर्णय से इस बाउट को जीत लिया और फाइनल में एंट्री की।
3: द विनर इन द ब्लू कॉर्नर अरुंधति चौधरी।
2: जैस्मिन हुडा के विरुद्ध थी लेसोथो की रेप्लांग मासलेला। ये फाइट इसलिए बहुत दिनों तक याद रहेगी कि सिर्फ एक राउंड चली। जैस्मिन के जबरदस्त पंच और कॉम्बिनेशन प्रहार सीधे उनके चेहरे पर, वो गिर गईं। रेफरी ने फाइट रोक दी, कहा कि अब आगे खतरा है, यानी पहला नॉकआउट निर्णय। जदुमणि सिंह नामीबिया के फिलिप हाउसेप के विरुद्ध, वो रिंग में रेड कॉर्नर में थे। वही कहानी जो सुबह से शुरू हुई थी, उसका एक और अध्याय जदुमणि ने भी लिख दिया। 51 किलोग्राम भार वर्ग में जायंट किलर कही जाने वाली भिवानी की साक्षी चौधरी ने कनाडा की अंबर जेनवाल को 5-0 से ही हराया।
4: It was against Canada. Opponent was little shorter, so I have reach advantage. So I maintained my distance and played counter and I succeeded in that. I won the bout unanimously 5-0. I want to represent my country in Olympics. And want to win gold medal for my country.
2: लगा कि विपक्षी क्या भारतीय मुक्केबाजों के आगे संघर्ष कर ही नहीं पा रहे हैं। शायद ये बात सच भी थी, क्योंकि अगली बाउट में प्रिया घंघास ने इंग्लैंड की लूसी किंग को एक बार फिर तीनों राउंड में रिंग में तिगनी का नाच नचा दिया। लवलीना बोरगोहेन, ये नाम ही काफी था तरुणा खानम के विरुद्ध। सुप्रसिद्ध लवलीना ने 75 किलोग्राम में आसानी से जीत दर्ज की, तो सचिन सिवाज को तो शुरू से ही डार्क हॉर्स कहा जा रहा था। वेल्स के ओवेन हैरिस को 5-0 से एक और जीत। अंतिम बाउट में 90+ किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेलवाल थे पॉल निगल के विरुद्ध, ये भी 5-0 से जीते। तो बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन, रिजल्ट 10 में 10।

0: यानी सभी मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए, एक अकल्पनीय सी बात। लेकिन आज तो सारी निगाहें स्वर्ण पदक की संख्या गिनने पर ही लगी होंगी।
1: सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में भारतीय साइक्लिस्ट के लिए 31 जुलाई का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। मेंस 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट में दिनेश कुमार ने 4:29.267 का समय दर्ज किया और क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग्स में 17th पोजीशन पर रहे। वहीं हर्षवीर सिंह सिखों ने 4:35.524 का समय रिकॉर्ड किया और 19th पोजीशन पर रहे। चूंकि सिर्फ शीर्ष के चार राइडर्स ही मेडल रेसेस में आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों इंडियंस क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए। वहीं मेंस केरिन में भी रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम और जेम्स सिंह अपनी अपनी फर्स्ट राउंड हीट से डायरेक्टली क्वालिफाई

0: एकम और जेम्स सिंह अपनी अपनी फर्स्ट राउंड हीट से डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाए। तीनों को रेपेचार्जेस के जरिए एक और मौका मिला, लेकिन कोई भी सेकेंड राउंड में नहीं पहुंच सका। हर्षवीर बाद में मेंस एलिमिनेशन रेस फाइनल के लिए वापस लौटे। वो स्टार्टिंग स्टेजेस में रेस में बने रहे, लेकिन अंत में एलिमिनेट हो गए। बोल्स में भारत के लिए कल का दिन सफल रहा, जहां राउंड चार में मेंस पेयर्स और विमेन्स सिंगल्स दोनों में सीधे सेट्स में जीत हासिल हुई। मेंस पेयर्स सेक्शन बी के मुकाबले में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार ने पोकलैंड आइलैंड्स के इयान बार्न्स और ओलिवर थॉमसन की जोड़ी को 2-0 से हराया। भारतीय जोड़ी ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करते हुए पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत की और दूसरे सेट में 10-1 से एक तरफा दबदबा बनाते हुए आसान। इस नतीजे ने भारत को क्वालिफिकेशन की रेस में मजबूती से बनाए रखा है। नवनीत और दिनेश इस सेक्शन में इंग्लैंड की बराबरी पर पहुंच गए हैं। हालांकि बेहतर शॉट डिफरेंस के कारण इंग्लैंड अभी भी आगे है, जिससे उनके आखिरी सेक्शनल मैच पर काफी कुछ दाव पर लग गया है। विमेन सिंगल्स में नयन मोनी साइकिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जाम्बिया की मिल्ड्रेड के खिलाफ पहला एंड गंवाने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और पहला सेट 17-2 व दूसरा सेट 11-2 से जीतकर 2-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। साइकिया अपने अभियान का अंत कल साउथ अफ्रीका की ब्रिजिट के खिलाफ मैच खेलकर करेंगी।
1: आज पुरुष ट्रिपल जंप में पदक के लिए कूद लगाएंगे प्रवीण चित्रावल और सेल्वा प्रभु। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका और रवीना होंगी। पोल वॉल्ट में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 5,000 मीटर के फाइनल में गुलवीर सिंह होंगे और मिक्स की 4x400 रिले के फाइनल में होंगे अंशा बाबू, रजदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश। इसके अलावा पैरा खेलों में 1500 मीटर पुरुष T54 फाइनल में रमेश षणमुगम होंगे और पुरुषों के शॉटपट F57 यानी पैरा शॉटपट में शुभम जुआल और सोमन राणा होंगे भारत की ओर से।
0: टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, वे स्टेपिंग इनटू द रिंग टू फाइट फॉर गोल्ड इन द फाइनल्स टुडे आर 10 इंडियन बॉक्सर्स। साक्षी 51 kg, प्रीति 54 kg, जैस्मिन 57 kg, प्रिया 60 kg, अरुंधति 70 kg and Lovlina Borgohain 75 kg in the women's categories, alongside Jadumani 55 kg, Sachin 60 kg, Ankush 80 kg and Narinder Berwal 90 kg in the men's division. Moving on to judo, we're stepping onto the mat today are Unnati Sharma women's 63 kg and Inan Ganbi women's 70 kg in the women's categories, alongside Harsh Tokas men's 81 kg and Karanjit Singh Mann men's 90 kg in the men's division, with all four fighters looking to battle their way through the rounds and contend for medals. In action in track cycling today are David Beckham, Ronaldo Singh and Rohit Singh in men's sprint, apart from Harshveer Singh Sekhon and Dinesh Kumar in men's 10-kilometer scratch race. In bowls, the men's pairs duo of Navneet Singh and Dinesh Kumar will be in action for round 5 of sectional play versus England, with the pair looking to secure a vital win to keep their hopes alive for a spot in the semi-finals. Meanwhile, Nayan Moni Saikia will sign off a campaign in round 5 of women's single sectional play.
2: Now let's talk about the medals at the Commonwealth Games. Australia leads the pack in the first place, England is second and Canada holds third. Meanwhile, Team India ranks 10th with a total of 23 medals, securing 5 gold, 12 silver and 6 bronze so far.
0: With editor Swati Kapoor, producer Shahnawaz Khan, my co-host Anupam Pathak, it is me Megha signing off for now. We'd be back again tomorrow with our coverage of Day 10.
3: The Commonwealth Games.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

वेल लिसनर्स, आपको क्या लगता है कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से होती है? अगर आपको भी यही लगता है ना, डोंट वरी, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। टुडे इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे एंड वी नीड टू टॉक अबाउट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वी ऑफन सी डायग्नोसिस एंड इमीडिएटली थिंक, ओ स्मोक करते होंगे उसी लिए लंग कैंसर हुआ है, बट ये गलत बात है। थिंक अबाउट अ प्रोफेशनल शेफ हु हैज स्पेंट

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। तो हम बात कर रहे थे आज के दिन का महत्व, जो है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो आपको भी यही लगता था कि सिर्फ सिगरेट पीने से स्मोकिंग लंग कैंसर होता है स्मोकिंग करने से? गलत बात है। तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी स्मोक के बारे में, जो है ब्रीथिंग इन स्मोक फ्रॉम समवन एल्स सिगरेट, जिसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। जैसे आप कहीं से गुजर रहे हो, वहाँ पे कोई भी स्मोक कर रहे होते हैं, तो वो इनहेल करने से भी हमें लंग कैंसर आने के चांसेस बहुत है। और जैसे हमारे अगले है हैवी पोल्यूशन एंड केमिकल्स, लिविंग इन ट्रैफिक और वर्किंग अराउंड कंस्ट्रक्शन डस्ट। आजकल हैदराबाद में हर जगह कंस्ट्रक्शन है, तो वो डस्ट इनहेल करने से भी ना लंग कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। एंड हार्श फैक्ट्री फ्यूम्स, अगर आप फैक्ट्रीज के साइड रहते हो, या आपका घर या आपका वर्क प्लेस फैक्ट्रीज जहाँ पे है वहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस है। इंडोर हजार्ड्स, जैसे कि रेडन गैस, एन इनविजिबल ओडरलेस गैस होता है, समटाइम्स जेनेटिक्स भी होते हैं ये लंग कैंसर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो इफ़ योर लंग्स आर सीक्रेटली कॉलिंग फॉर हेल्प? यानी साइंस एंड सिम्टम्स क्या है जैसे हमें पता चलता है कि सिस्टम में ना कुछ तो गड़बड़ है? एंड वॉट इज दैट सिंपल सुपर पेन फ्री टेस्ट दैट द डॉक्टर्स यूज टू कैच इश्यूज बिफोर दे टर्न सीरियस? वेल, आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली द वार्निंग साइंस टू लुक आउट फॉर राइट आफ्टर अ कमर्शियल एंड अ सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।
1: अब गरीबों की जय बन गई है।

ये था स्वीट हार्ट फ्रॉम द मूवी केदारनाथ, और जो हमारा स्वीट हार्ट है उनको जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स, उसका भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है। सो वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रिया को। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे बिना स्मोकिंग के अपने फेफड़ों को यानी लंग्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने वादा किया था कि शरीर क्या इशारे देता है और डॉक्टर्स किस तरह स्क्रीनिंग करते हैं, इसके बारे में अभी बताऊंगी। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, जब भी अंदर कुछ गड़बड़ होती है ना, वो ज़रूर दिखता है। वो छोटे छोटे हिंट्स देती रहती है, बस हम उसे इग्नोर करते हैं। यानी जनरल वाला सर्दी खांसी हो गया हो, अगर वो एक हफ्ते से बढ़ के हो तो दिखा देना बहुत ज़रूरी है, और हम इसी वक्त को ना इग्नोर कर देते हैं, और ये वक्त में ना वो सीरियस भी बन सकता है। जैसे 3 हफ्ते से ज़्यादा रहने वाली खांसी, जो जाने का नाम ही ना ले, और सांस फूलना। पहले जो सीढ़ियाँ आप हंसते खेलते चढ़ते थे, अब उसी में सांस फूलने लगे। छाती में दर्द, गहरी सांस लेते हंसते वक्त या सीने में दर्द होना, बिना वजह के वेट कम होना, या खांसी में खून की चिंतौनी। अगर आपके घर में या आसपास किसी को हफ्ते दर हफ्ते खांसी ठिकी हुई है, तो यू उसे मौसम का बदलाव बोलकर टालो मत, डॉक्टर को दिखा लीजिए। जैसे हमारे डॉक्टर या स्क्रीनिंग बोलते हैं इसका कैंसर टेस्ट, शब्द सुना हो?

0: हम बात कर रहे थे वही दिल के बारे में जो दिल को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स। आज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे और हम बात कर रहे थे मैजिकल टिप्स के बारे में। जैसे इजी टिप्स है, कोई मैजिक वैजिक नहीं है। सुबह सुबह खिड़कियाँ खोल दो और घर में स्नेक प्लांट या पीस लिली जैसे पौधे लगाना। कोई आस पास सिगरेट सुलझ गए तो प्यार से बोल दो, भाई थोड़ा साइड होकर पी लेना। और मास्क का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक में बाइक चलाते
1: बिल्कुल
0: वक्त या घर की पुरानी सफाई करते वक्त एक साधारण मास्क पहन लो। तो दोस्तों, बात बहुत सीधी है। सांसें साफ रखो, जागो रहो और अपने शरीर को सुनो। चलिए इसी से अब हम आज सेगमेंट खत्म करते हैं और अगला आ रहा है हमारा न्यूज़ हेडलाइंस जो 11 बजे से। सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: बिरयानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।
2: Well, listeners, you're listening to 101.9 FM Rainbow, where rainbow adds colors to your life. Please stand by for the news headlines from Delhi at 12. And till then, we have another song coming your way. Enjoy the tunes and stay tuned.

श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और एक्साइटिंग दिन है। टुडे इज नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। मुझे सच सच बताओ, कितने लोग हैं जिनका मन करता है बस काम धाम छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल जाए? मेरा भी। अरे इस मौसम में ना पहाड़ भी कितना मैजिकल हो जाते हैं, मैजिकल दिखते हैं, महसूस होते हैं। नेचर इज़ लिटरली ब्लूमिंग एंड शोइंग ऑफ। हर तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन घास, ग्रीन पैरट्स, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए बादल और धार धार बहती हुई वाटरफॉल्स। ऐसा लगता है ना जैसे कि पूरे पहाड़ पे एक कोई ग्रीन कारपेट बिछा दिया हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैकिंग करने पर जो हमें पीस मिलता है उसके पीछे भी ना एक साइंटिफिक रीज़न है। जब आप पहाड़ों पर क्लाइंब करते हो, आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स और डोपामाइन रिलीज करता है, यानी हमारे हैप्पी हार्मोन्स। प्लस पहाड़ों की शुद्ध हवा और मिट्टी की खुशबू आपके स्ट्रेस के लेवल को ना इंस्टेंटली ज़ीरो कर देती है, लाइक अ नेचुरल ब्रेन रीसेट बटन। लेकिन इस मौसम में ट्रैकिंग करने के जितना मज़ा आता है उतना ही ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो मॉनसून के बेस्ट माउंटेन वाले ट्रैक्स कौन से हैं और कौन से सेफ्टी टिप्स हैं जो आपको पहाड़ के हीरो बने रखेंगे? ज़ीरो नहीं बट हीरो। ये सब बताऊंगी मैं आपको इस एक सुपरहिट मॉनसून ट्रैक के बाद। कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ 7 ఆగస్టు. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 04023680333 లేదా 2368555 లో లేదా www.braou.ac.in లో పొందవచ్చు.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेनबो. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्री. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे द नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के बारे में. तो चलिए, अगर आपका भी पैकअप करके पहाड़ों में घूमने जाने का मन हो ना, 3 मानसून ट्रैक्स बता देती हूँ. नोट कर लीजिए, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है उत्तराखंड में. इस मौसम में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती है. हजारों किस्म के फूल एक साथ खिलते हैं और लगता है जैसे आप किसी फेरी टेल में आ गए हो. नेक्स्ट अप वी हैव महाराष्ट्र में सिंघाड़, इसे ना कालसूभाई पीक भी कहते हैं. वेस्टर्न घाट्स इस मौसम में अलग ही शाइन करती है. घनी धुंध, हरा भरा रास्ता और टॉप पर गर्मा गर्म खांदा बजी और चाय, प्योरली हेवन. अगला है हमारे हिमाचल प्रदेश में त्रायुन ट्रैक. बिगिनर्स के लिए ना ये बेस्ट है. बारिश के बाद जब धुंध छा थी तो अगर दौड़कर रेंजेस के व्यूज पर देखकर आपका दिल खुशी खुश हो जाता है. तो अगर आप हैदराबाद में और हो और आपका भी वीकेंड पर पैकअप करके पहाड़ों और ट्रेल्स पर जाने का मन हो ना, उतना दूर जा नहीं सकते, हैदराबाद में भी बता देती हूँ. एक है अपना फेमस अनंतगिरी हिल्स विकाराबाद, हैदराबाद से बस 1 घंटे दूर पर है. और इस मौसम में डेंस फॉरेस्ट, घाट रोड्स और हरा भरा व्यू एकदम मैजिकल लगता है. बिगिनर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट ट्रायल है. अगला है हमारा भुवनगिरि फोर्ट. ये हमारे यादाद्री भुवनगिरि डिस्ट्रिक्ट में है. एक विशाल मोनोलिथिक रॉक हिल क्लाइंब. इस मौसम में यहाँ चारों तरफ का व्यू जबरदस्त लगता है और टॉप पर पहुँचते पहुँचते पर ठंडा मौसम की हवा सारी थकान दूर कर देती है. इससे भी पास में चाहिए, वेल ये भी बता देती हूँ, खाजागुड़ा हिल्स हैदराबाद. ये ना खाजागुड़ा लेक के पास. अगर सिटी से बाहर दूर नहीं जाना है तो खाजागुड़ा के बाउल्डर और ट्रायल्स मॉर्निंग सनराइज देख लीजिए, सनसेट देख लीजिए. ट्रैकिंग के लिए मस्त स्पॉट है. द नेक्स्ट अप इज रचकोंडा फोर्ट. नेचर लवर्स के लिए ना ये एक हिडन जेम है. मॉनसून्स में यहाँ के पुराने रुइंस और रॉकी हिल्स अच्छा दिखता है और ऊपर से ना सनराइज सनसेट वगैरह मस्त दिखता है. ये सब ठीक है, बट सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हिल्स हैं. अपना मोहलाली फोर्ट के तरफ भी है, सनसेट अच्छा दिखता है, सनराइज अच्छा दिखता है, ठंडी हवा मारती है तो सारी थकान दूर हो जाती है. पर इस प्यारी सी अपनी जगह वाली ट्रैक है जो अपने को ना सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मॉनसून ट्रायल पर जाने से पहले 4 बातों का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए. एक है गुड ग्रिप शूज़. नॉर्मल स्नीकर्स पहन लेते हो ठीक है, बट मत निकालना पड़ा ये पहनना चाहिए. रॉकी ट्रायल्स होते हैं तो स्लिप ना हो सके. गुड क्वालिटी ट्रैकिंग शूज़ मस्ट है. और एक है वाटरप्रूफ एवरीथिंग, यू नो लाइक बैग, जो भी आप कैरी करते हैं ना सारे वाटर प्रूफ रख लीजिए ताकि वाटर उनमें सोक ना कर पाए और अच्छे से आप ट्रैक कर ले सकते हैं. एक अच्छा सा रेनकोट, अच्छा सा बैग और रेनी कवर्स बैग को ज़रूरी है, क्योंकि भीगा हुआ फ़ोन और वेट सॉक्स पूरा मूड खराब दे सकता है, राइट. द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइड्रेशन एंड क्विक एनर्जी. बारिश में प्यास कम लगती है पर

बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो आपका स्पीड भी कम हो सकता है, आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो सकते हैं. सो कीप ड्रिंकिंग वाटर एंड कैरी सम ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार्स. तो लिसनर्स, चाहे पहाड़ चढ़ना हो या जिंदगी की कोई खैत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो. व्यूज हमेशा टॉप पर ही ज़बरदस्त मिलते हैं. अप नेक्स्ट, आई हैव अनदर ब्लॉकबस्टर ट्रैक कमिंग अप फॉर यू. कीप लिसनिंग टू 101.9 FM रेनबो. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। सो अनदर साउंड ट्रैक इज बैक फ्रॉम 2016, रिलीज्ड ऑन जुलाई 29th 2016। द चेन स्मोकर्स एंड हेलसी टर्न क्लोजर इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट EDM सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम। इट हैज बीन अ डेकेड एंड इट स्टिल स्टेज विद अस। द ट्रैक स्पेंट 12 consecutive weeks at number 1 on the Billboard Hot 100, became one of the most streamed songs in Spotify history, and helped bring electronic music to an even bigger global audience. 10 years later, Closer is still played at festivals like Tomorrowland and Ultra Music Festival, while the millions continue to stream it every month. Few EDM songs have had the culture impact and staying the power of Closer. It has been a decade for this amazing chartbuster, and right now, next is Closer. Stay tuned to Akashavani FM Rainbow 101.9, and here's the song coming your way. Enjoy the tunes.

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। वेल बी नेक्स्ट अप वी हैव अनदर कमर्शियल स्पॉट कमिंग योर वे।
1: ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫార్మ్స్ ఇస్తారు. ఓటర్లు ఆ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
0: Well, listeners, आज महीने का पहला तारीख है एंड वी ऑल नो व्हाट दैट डेट मींस. दैट मींस पे डे. बैंक अकाउंट से वो प्यारा सा SMS नोटिफिकेशन आता है, दिल को ठंडी ठंडी शांति मिलती है और हम सब थोड़े टाइम के लिए अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं जैसे हम दुनिया से सबसे बड़ी अमीर इंसान है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हर महीना हम सैलरी के लिए भागते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया है? वेल, इस मनी के स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड हीरो है. गेस करना है, कर लिया तो बता देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 0402324822 पर. बता देती हूँ, तब तक आप बता दीजिएगा. एंड इट इज सॉल्ट. हाँ, वही नमक जो आपके खाने में होता है. एंशियंट रोम में लॉन्ग बिफोर UPI एंड डिजिटल वॉलेट्स, रोमन सोल्जर्स को उनका पेचेक कैश में नहीं मिलता था बल्कि सॉल्ट यानी नमक से मिलता था. फिर नमक खरीदने का अलाउंस मिलता था, जैसे वो कहते थे ना सैलेरियम. क्योंकि उस जमाने में नमक सिर्फ खाना टेस्टी नहीं बनाता था, वो फूड प्रिजर्व करता था, वोंड हील करता था. सो बेसिकली इट केप्ट द एम्पायर्स रनिंग. उस साल के ज़माने में ना सॉल्ट वॉज द रियल गोल्ड. तो जब आप मंडे मॉर्निंग को ऑफिस जाने के लिए ग्रम्बल करो ना कि नहीं जाना है यार, आज एक दिन छुट्टी ले लूँ क्या, सोचो मत. याद भी रखो कि पीनट्स के लिए नहीं, सॉल्ट के लिए काम कर रहे हो आप. एंशियंट, एसेंशियल एंड वैल्यूएबल. और उस सॉल्ट अभी भी अपने को वर्थ दिखाता है, जैसे सॉल्ट के बिना करी ही क्या. वर्थ योर सॉल्ट, इसी से आया है इडियम. पर बात सिर्फ सैलरी की नहीं है दोस्तों. हम जो डेली लाइफ में वर्ड्स बोलते हैं ना, उनके पीछे ना हिडन डार्क सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि नाइटमेयर. हम सोचते हैं बैड ड्रीम, राइट? पर ओल्ड इंग्लिश में मेयर का मतलब होता है इविल स्पिरिट. लोग मानते थे कि रात को एक डीमन आपके चेस्ट पर आकर बैठ जाता था और आपकी सांस घुटता था. सो नाइटमेयर वाजंट जस्ट अ फियर इन माइंड, बट इट वाज अ फियर विद फेस. That was in ancient times. Well, we'll know more about this after this slight short music break. As we spoke about money, we have another Telugu manga coming your way. Enjoy the tunes and keep listening to

वेल, आपने सुन लिया है, चेक कर लिया अपना SMS, सैलरी क्रेडिट हो चुका है क्या? वेल, दीज वर द बैक स्टोरीज बिफोर द वर्ड फॉर द वर्ड विच वॉज सैलरी विच कम्स फ्रॉम असॉल्ट एंड द नाइटमेयर हम बात कर चुके हैं. एंड द नेक्स्ट अप वी हैव इज क्लू. जैसे हम थ्रिलर क्राइम मूवीज में क्लू मांगते हैं ना, दैट केम फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड क्ल्यू, जो फॉलो करता हुआ बाहर आया था और क्ल्यू से बना

लो, पूरी दुनिया की हिस्ट्री हमारी जुबान पर बैठी हुई है और हमें पता भी नहीं है। और अगला अपना वर्ड है जो जाने पहचाना सा वर्ड है, वो है क्वारंटीन। वेन वी हियर इट वी थिंक ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स एंड स्टेइंग इंडोर्स, मॉडर्न मेडिकल स्टफ राइट। बट दिस वर्ड एक्चुअली सेल्ड इन फ्रॉम द सी। बैक इन 14th सेंचुरी यूरोप वॉज फाइटिंग द डेडली ब्लैक प्लेग टू कीप इन्फेक्टेड ट्रैवलर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग द डिजीज अशोर। द वेटेनियंस मेड अ रूल कॉल्ड क्वारंटा ग्रॉनी, विच लिटरली मीन्स 40 डेज। सो दैट कम्स क्वारंटीन। एंड माई एब्सोल्यूट फेवरेट वर्ड इज रोबोट्स। टुडे वी इमेजिन स्लीक मेटल ग्लोई ब्लू आईज एंड ए आई वैक्यूबिंग आवर फ्लोर्स। बट एग्जैक्टली 100 ईयर्स अगो दिस वर्ड हैज जीरो टेक्शाइन। इट क्रिएटेड ऑन स्टेज इन 1920 बाय अ सेज प्ले राइट नेम्ड करल कपेक इन अ प्ले कॉल्ड RUR। द वर्ड ही यूज्ड वॉज रोबोटा, अ सेज वर्ड दैट लिटरली ट्रांसलेट्स टू फोर्स्ड लेबर, हैवी ड्रगरी एंड अनपेड हार्डवर्क। द फर्स्ट रोबोट्स वरंट मार्वल्स ऑफ साइंस बट दे वर वार्निंग्स हाउ ईजिली डीह्यूमनाइजेज द वर्क। Talk about the plot twist. Every single word we speak carries the dust of ancient lands, ancient seas, and human history. So today, as you enjoy your first month of salary, remember, you are living in a world built of 1,000 years of incredible stories. So keep the good vibes rolling with this awesome track coming up next. Stay tuned to Akashavani FM Rainbow 101.9 aur main hu aapki RJ Pri. The next step we have is Hello Rainbow at 1 o'clock. फ़ोन नंबर बता देती हूँ, टॉपिक भी बताऊंगी इस गाने के बाद। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा 0402323-0030, 0402323-4821 एंड नन अदर नंबर इज 0402970-4715। कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

आपके लिए हाल कैसा है बता दीजिए। 0402323484 इज़ अ व्हाट्सएप नंबर। वेल स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। सो हम है हेलो रेनबो पर, और हम बात कर रहे थे आपके भाई या बहनों के साथ कि आपकी प्यारी सी छोटी सी याद कौन सी है आपके छोटे वक्त पे। ये आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। नंबर हमारा है व्हाट्सएप का 0402323484822, और हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग है हमारे व्हाट्सएप पे। कॉलर रेडी है हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुनते हैं कौन है। हेलो रेनबो।
1: हेलो हेलो
0: सर, आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ, सुने आ रही?
0: यस सर बोलिए सर।
1: నేను ఓలేటి ప్రభాకర్ రావు మాట్లాడుతున్నాను
0: సార్, చెప్పండి సార్.
1: హలో
0: సార్ చెప్పండి.

8821 और एक नंबर है 0402970471। आप कॉल कर सकते हैं, आपकी मीठी मीठी यादें, बचपन की यादें जो आपके सिबलिंग्स के साथ है वो हमें शेयर कर सकते हैं। सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

आपने हमारा नंबर तो सुन लिया है, आप फोन उठा सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। एक और बार बता देती हूँ, हमारा व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग नंबर है 0402323482। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। अश्विन जी ने भेजा है, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून भी आपको। लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। प्लेजर एंड पेन आर द वैल्यूबल टूल्स ऑफ परस्यूट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। व्हेन द प्रेजेंट इज़ वेल वर्कड एंड लिव टू द फुलेस्ट, व्हेन द पास्ट इज़ रिपेयर्ड द फ्यूचर इज़ प्रिपेयर्ड। कितना अच्छे लाइफ लेसन बताए आपने। हमारे साथ जुड़ने के लिए कॉलर रेडी है हमारे साथ, सुनते हैं कौन है। हेलो,

0: हेलो
1: आरजेपी। हेलो,
0: हेलो रेनबो।
1: नमस्ते आरजेपी।
0: नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, फजल है। जी
0: आपने टॉपिक सुना है आज का?
1: जी
0: आप टॉपिक सुना है आज का?
1: जी हम

0: ही साथ बैठते थे स्कूल में, क्लास में, एक ही क्लास. अब एक ही साथ बैठ रहे बोल के हमारे को अलग कर दिए टीचर्स.
1: ओके मैम.
0: तो और हमारा ये आदत थे, गाने की आदत बहुत ज्यादा थे हमको. दोनों भी बहुत सिंगिंग करते थे छोटेपन से.
1: जी मैम.
0: स्कूल में भी मिलके हम प्रेज सॉन्ग करते थे और भजन सॉन्ग गाते थे. ऐसा हमको बहुत सिंगिंग बोले तो बहुत पसंद है.
1: ओके मैम.
0: अभी भी वही आदत है हमारा. तो इसके बाद मेरी बहन, थोड़ी मैं छोटी हूँ ना, एक काम भी नहीं करती थी घर में, पूरा काम बहन ही करते थे.
1: okay,
0: मेरे पेरेंट्स एम्प्लॉइज थे.
1: ओके मैम.
0: तो मेरी बहन का शादी होके चले गए. मैम कितना रोई मैं तो, सीरियसली वो सिचुएशन अभी भी याद आए तो मुझे अभी भी रोना आता है.
1: हाँ मैम, कितने सारे मेमोरीज जुड़े हैं आपके चाइल्डहुड के.
0: बहुत क्यों बोले तो बहन मुझे मारते थे. मैं एक काम भी घर में नहीं करती थी. अच्छा खाती थी, पढ़ती थी और दोस्तों के साथ फिरती थी छोटेपन में. घर का काम पूरा बहन ही करते थे. मैं एक काम भी नहीं करती थी. खाना भी नहीं खाती थी, प्लेट धोना पड़ता बोल के.
1: मैम
0: तो मेरी मम्मी खिलाए तो ही खाती थी नाइट टाइम. दोपहर के टाइम तो बहन खिलाते थे.
1: जी मैम.
0: उतना लास्ट से मैं बड़ी हूँ, मेरी घर का काम पूरा बहन ही करते थे.
1: That's very nice, ma'am.
0: मेरी बहन बोले तो मुझे बहुत पसंद. मतलब ये क्यों बोलते, उनके शादी होके चले गए ना, मैं 3 मंथ्स तक रोई मैम उनके लिए.
1: जी मैम, that's such a nice memory, ma'am.
0: 16 इयर्स में शादी हो गई थी बहन का, जब मुझे 14 इयर्स था. ये मेरी बहन को जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो सॉन्ग प्ले कराना उनको बहुत पसंद मैम.
1: ओके मैम,
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग इन.
0: थैंक यू मैम.
1: कितने सारे मेमोरीज है ना अपने भाई बहन के साथ. ये अगस्त एक ये महीना है जो रक्षाबंधन का है हमारे बॉन्ड्स के लिए. हम ही रक्षा करें इसका मतलब यही होता है. और एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक गाना आ रहा है, सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9.
2: సామాన్లు కొనేటప్పుడైనా ముందుగా బిఎస్ క్వాలిటీ మార్క్ అంటే ఐఎస్ఐ మార్క్ ను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోండి. ఆ చిహ్నం ఉందంటే అంతా బాగున్నట్టే.
3: ఆ చిహ్నం లేకపోతేనో?
2: ఒకవేళ మార్క్ లేదంటే ఆ ఉత్పత్తి మీకు సురక్షితం కాదని అర్థం చేసుకోండి. భారత ప్రభుత్వం 750కి పైగా ఉత్పత్తులపైన బిఎస్ మార్క్ ను తప్పనిసరి చేసింది. ఈ రోజే బిఎస్ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
4: సోదరా, భద్రత విషయంలో కామెడీ చేయకండి.
5: బిఐఎస్ నమ్మకానికి నాణ్యతకు స్ఫూర్తి.
6: జారీ చేయవారు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ హైదరాబాద్.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन और मैं हूँ आपकी आरजे प्रिया बांधवी. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू अ हेलो नमस्ते आदाब. अपना अगला प्रोग्राम है जश्न हैदराबाद, सुनते रहिएगा.

वेल दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आरजे दीपा से रिम जिम हैदराबाद। रात 9:30 पर आप सुनेंगे और द प्रोग्राम नए रंग।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM रेनबो पर। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 15 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है अर्थ प्रोग्राम नए रंग का। समय इनकी खिदमत में सनालमाज बावजीर का पुरखलूस आदाब। पेश है अर्थ प्रोग्राम नए रंग।

आगाज पर सुनिएगा हरफे ताबिंदा, इसके बाद आप सुन सकते हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की।

और हम बात करेंगे वर्ल्ड लंग कैंसर डे की। हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में बातें होंगी। मौसमी बरसात में आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखें।

0: तो आइए दोस्तों बज्म का आगाज करते हैं हर्फे ताबिंदा से।
1: कमज़फ जब उरूज पर आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र बदल जाती है, फिर बदलता है उनका लहजा और फिर बदलती है उनकी आवाज़। वो लोग जो कल

0: तक मिन्नतें करते थे आज कुर्सी पर बैठकर नजरें उठाकर बात करना भी गवारा नहीं करते। वजह ये नहीं कि वो बड़े हो गए हैं, वजह ये है कि उनके अंदर का छोटापन अभी जिंदा है। असल ज़र्फ वो होता है जो ताकत मिलने के बाद भी कमज़ोर ना पड़े, और कमज़र्फ की पहचान यही है कि वो इख्तियार मिलते ही सख्त लहजा और रवैया इख्तियार कर लेता है। कहा जाता है जिसको इज्जत हजम ना हो सके वो इज्जत मिलते ही दूसरों की बेइज्जती शुरू कर देता है। जिसको इख्तियार संभालना ना आए वो इख्तियार मिलते ही लोगों को तंग करना शुरू कर देता है। वो कमज़र्फ लोग उरूज को अपनी कामयाबी नहीं समझते बल्कि उसे दूसरों को नीचा दिखाने का मौका समझते हैं। आप गौर करें, हकीकतन जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े होकर भी छोटे ही रहते हैं, अपने से छोटों से अदब व इखलास से पेश आते हैं। लेकिन जिनका दिल अंदर से तंग होता है, जो हसद करते हैं, वो बड़े होकर भी छोटे ही रह जाते हैं। देखा जाए तो उनके पास कुर्सी, पैसा, सब कुछ ही होता है, लेकिन बस कुछ नहीं होता तो रहमदिली का जज्बा और अखलाक। यही वजह है कि कुछ लोग कामयाबी के बाद पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाबी के बाद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। कमज़र्फ के उरूज की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो अपने माजी को भूल जाता है और उन लोगों को भी जो उसके मुश्किल वक्त में साथ थे। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि कमज़र्फ को जब ताकत मिलती है तो वो बदला लेता है, इंसाफ नहीं करता। ज़र्फ़ की कमी हमेशा ताकत के गलत इस्तेमाल की सूरत में ही सामने आती है। याद रखिएगा, उरूज सिर्फ इंसान की पहचान नहीं बदलता। जो खुश अखलाक, खुश बाश और नेक होता है वो ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता, और जिनके दिल तंग होते हैं, जिनके पास अखलाक नहीं होते, वो ताकत मिलने पर अपनी ताकतों और सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी इंसान को परखना हो तो उसे इख्तियार दे दें, वो कितना छोटा है वो खुद ही बता देगा। अमजद हैदराबादी का एक खूबसूरत सा शेर है, वो लिखते हैं, कमज़र्फ अगर दौलत तो ज़र पाता है, कमज़र्फ अगर दौलत तो ज़र पाता है, मानिंद हबाब उभर के इतराता है, करते हैं जरा सी बात पर फिक्र खसीस, दिन का थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है।
1: आयशा बुतुल की आवाज में दोस्तों अभी आपने सुना हरफे ताबिंदा। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी बिल्कुल, हम आपसे ढेरों सारी बातें करेंगे और आगे हम बातचीत करेंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरन से लिया गया बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। नरेंद्र शर्मा के बोलों को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ लता मंगेशकर की।

मन को पवित्र करने वाला गीत अभी आप सुन रहे थे, सुर कोकिला, सुरों की देवी लता मंगेशकर की आवाजों में। हाँ जी बिल्कुल, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, यानी कि नित नए रंगों से सजा उर्दू प्रोग्राम नए रंग मेरे संग। जी हाँ, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और इस गीतों के सफर में बातें होंगी अनेक। बिल्कुल सुरीले गीतों का सफर हम शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, अंतराल के उस पार।

हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं मनचले नटगत गीत लेकर और ढेर सारी बातें लेकर। बिल्कुल, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों की सेहत के लिए माँ के दूध की अहमियत और फवायद से आगाह करना है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया भर के लोगों को ये बताना है कि एक नवजात बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा के लिए माँ का दूध कितना ज़रूरी होता है। हाँ जी, हम बातें करेंगे आलमी हफ्ता बराए दूध, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

हाँ जी, हम बातें कर रहे हैं आलमी हफ्ता बराए दूध पिलाना, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। ये हफ्ता माओं और ख़ानदानों की रहनुमाई करता है ताकि बच्चों को इब्तदाई महीनों में सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, माँ के दूध की अहमियत रहती दुनिया तक बरकरार रहेगी। बिल्कुल, मदर मिल्क में कुदरती ग़िज़ा, क़ुव्वत मुदाफ़त और आसान हज़मा ज़हनी नशोनुमा पाया जाता है। माँ के दूध की अहमियत पर हम जो है ना मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावाजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप सुन रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। हाँ जी, माँ का दूध बच्चे के लिए पहली और बेहतरीन गिज़ा है, और ये दूध बच्चे में बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करता है, यानी कि बच्चे में इम्यूनिटी सिस्टम को एक तरह से बढ़ाता है। और ये दूध बच्चे के नाजुक मैदे के लिए भी बहुत मौफिक और हजम करने में मदद देता है। हाँ भाई बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे के दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सकती है। आलमी हफ्ते का मकसद इससे संबंधित अधिकतर जानकारी हम आपको ज़रूर प्राप्त करेंगे उर्दू प्रोग्राम नैरंग के ज़रिए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। जी हाँ, आलमी हफ्ते का मकसद ये है कि माशरे में माँ को दूध पिलाने के हवाले से पाई जाने वाली झिझक को ख़त्म करना है। अच्छा, बास महिलाएं ये सोचती है कि भाई दूध पिलाने से जो है ना कि हमारा फिक्र ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये वो नहीं सोचती है कि भाई बच्चे का क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है कि उनको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। और काम करने वाली माओं के लिए दफातर और अवामी मुकामात पर सहूलियात फराहम करना चाहिए और ख़ानदान और माशरे को इस बात का एहसास दिलाना कि वो माँ की माउनियत करें। बिल्कुल, माँ का दूध पिलाना बच्चे का बुनियादी हक है। आलमी हफ्ता बराए दूध पिलाना वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हमें ये याद दिलाता है कि हम एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए माओं और बच्चों की बेहतर देखभाल का अज़्म करें।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और तो प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी, हम आगे जानेंगे वर्ल्ड लंग्स कैंसर कब और क्यों मनाया जाता है, एक छोटे से अंतराल के बाद।

हाँ भाई, हम अंतराल के बाद फिर हाजिर हैं मनचले गीत लेकर और साथ ही ढेरों सारी बातें लेकर। हाँ जी बिल्कुल, वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में फेफड़ों के कैंसर की वजूहात, अलामत और बचाव के बारे में आगाही पैदा करना है। हमारी एक साथी लिखती है कि फेफड़ों का कैंसर क्या है, ये क्यों होता है और इसके वजूहात क्या-क्या हैं? तो हम बता दें कि फेफड़ों का कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसमें फेफड़ों के खलियात गैर मामूली और बेकाबू तरीके से बढ़ने लगते हैं। ये बीमारी दुनिया भर में अमवात की बड़ी वजह में से एक है।

हाँ जी, फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजह तंबाकू नोशी और सिगरेट का इस्तेमाल इस कैंसर की सबसे बड़ी वजह होती है। फैक्ट्रियों का धुआं, फजाई आलूदगी और नुकसानदार गैसेस भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और एक होता है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट ना पीने वाले अफराद अगर तंबाकू नोशी करने वालों के पास बैठे तो भी खतरे की जद में आ जाते हैं। और इसकी अलामतें होती क्या क्या हैं, हम जानेंगे एक छोटे से गीत के बाद।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और साथ ही हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे की। जी हाँ, इसकी अलामतें होती यह है कि मुसलसल खांसी जो ख़त्म ना हो, खांसी में खून का आना, सांस लेने में दुश्वारी

0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेफड़ों के कैंसर की, जो कि हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि फेफड़ों का कैंसर एक जानलेवा बीमारी होती है।
1: हाँ,

जी हाँ दोस्तों, फेफड़ों के कैंसर के बचाव या फिर एहतियात ये हो सकते हैं कि आप सिगरेट नोशी और तंबाकू मसनुआत से मुकम्मल परहेज़ करें और आलूदगी और धुएं वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें, सेहतमंद खुराक खाएं और बाकायदगी से वर्जिश करें, और अगर आपको ऐसी कोई अलामत ज़ाहिर होती है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें ताकि बर वक्त आपका इलाज मुमकिन हो सके।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और जो प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, नए रंग के सामायन को हम ये बता दें कि लोक कमानियाल बाल गंगाधर तिलक की बरसी पुण्यति 1 अगस्त को मनाई जाती है। वो हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी, कौम परस्त रहनुमा और स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे लेकर रहूँगा का मशहूर नारा देने वाले पहले अवामी रहनुमा थे। इनका इंतकाल 1 अगस्त सन 1920 को हुआ था।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 एफएम रेनबो पर, और इस वक्त स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के 10:50:30 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंदे हिंदी फिल्मी गीत। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जहाँ हम इस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं वहाँ पर हमें एहतियात और सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस बदलते मौसम में सेहत बिगड़ने का ख़तरा लाहक होता है, मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होती है, ऐसे में डेंगू निमोनिया बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि शहर हैदराबाद में वक्तन फवक्तन बारिशों का सिलसिला जारी है, ऐसे में हम आवाम को यही सलाह देंगे कि आप तेज़ हवाओं के दौरान दरख्तों और पुरानी दीवारों के नीचे खड़े रहने से परहेज़ करें और ट्रांसफार्मर से दूरी अख्तियार करें। ज़ोरदार बारिश के दौरान मैनहोल्स खुले रहने से हादसात जन्म ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल रवाना करते वक्त इस चीज़ का ख्याल मुकम्मल तौर से रखें।

सुरीले गीतों का सफर होता है यहीं पर अब खत्म। आइए अब सुनते हैं पयाम-ए-शब, तहरीर और पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर ज़ेदी की।

और क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। ये शेर जिंदगी की तल्ख हकीकतों, कुर्बानियों और मजबूरियों की अक्कासी करता है। जब पास बेचने के लिए कुछ ना हो, तो अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिश और अपनी आरजुएं ही कुर्बान कर दें। ये उन लोगों की दास्तान है जो हालात के हाथों अपने दिल के अरमानों को तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज का पैगाम ये है कि ज़िंदगी में बाज़ाओकात इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने ख्वाबों की कदर करना भी ज़रूरी है। वक्ती फ़ायदे या दबाव के तहत अपने तमाम मकासिद और उम्मीदों को कुर्बान कर देना दानिशमंदी नहीं, ख्वाब ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अपने ख्वाबों और मकासिद की हिफाजत करो, क्योंकि यही तुम्हारी ज़िंदगी का सरमाया है। हालात से समझौता ज़रूर करो, मगर अपने हौसले और उम्मीदों को मुकम्मल तौर पर फरोख्त तो न करो। ज़रूरत इंसान से बहुत सी कुर्बानियाँ मांगती हैं, लेकिन कामयाब वही है जो मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों की रोशनी को बुझने न दे। अगर कुछ ख्वाब कुर्बान भी करने

0: پڑ جائیں تو نئے خواب دیکھنے کا حوصلہ زندہ رکھو۔
1: تو دوستو اسی کے ساتھ آج کا اور پروگرام نئے رنگ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وعدے کے ساتھ دوبارہ جلد ہوگی آپ سے ملاقات انہی میٹرز پر۔ تب تک کے لیے آپ کی ریڈیو دوست ثنا الماس باوزیر کو دیجیے اجازت۔
2: سوامی ویویکانند سانسکرتک یوا کیندر کا شبھارمبھ کیا۔ انہوں نے وگیان، پرودیوگیکی اور کھیل میں ہوئی پرگتی کا شرے یواؤں کو دیا۔ پردھان منتری نے آندھرا پردیش میں 18,000 کروڑ روپے کی وکاس پریوجناؤں کا شبھارمبھ کیا۔ کیندر نے باڑھ پربھاوت راجیوں کو سہایتا کے لیے 2,000 کروڑ روپے سے ادھک کی اگرم راشی جاری کی۔ بھارت اور چین نے سکم کے ناتھولا درے سے سیما پار ویاپار پھر سے شروع کیا۔ اروناچل پردیش سرکار نے سرکاری کرمچاریوں کے لیے پینشن پرکریا کو آسان اور سمے بدھ بنانے کے لیے ای بھوشیہ پینشن سویکرتی ایوم ٹریکنگ پرنالی شروع کی ہے۔ مہاراشٹر سرکار نے کاکروچ جنتا پارٹی اور انیہ سنگٹھنوں کو ملی ودیشی فنڈنگ کی جانچ شروع کر دی۔ اڑیسہ میں باڑھ کا پرکوپ جاری ہے۔ کیرل میں لگاتار بارش سے بھاری نقصان ہوا ہے اور 6 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اور راشٹر منڈل کھیلوں میں مکے بازی میں ساکشی چودھری، پریا گھنگھاس، اروندھتی چودھری، جیسمین لیمبوریا تتھا پریتی پوار نے اور پیرا ایتھلیٹ میں سومن رانا نے شارٹ پٹ میں سوئرن پدک جیتا۔ تو یہ تھے اب تک کے مکھیہ سماچار، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔
3: युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
3: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शा के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार

0: Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers 2331 4444, 2371 7117, and 2331 0464. These are Delhi numbers, so listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, kyunki aaj shanivar hai, to isliye har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hame call kijiye 2331 4444, 2371 7117 और 2331 0464 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड भी डायल करें. लेकिन जरूर याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर ओवर 1.6% वीकली गेन. सेंटर रिलीजेस ओवर 1.09 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स. एंड इंडिया जीएसटी कलेक्शन सर्जेस ओवर 2.11 लाख करोड़, मार्किंग 15.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन जुलाई.
1: इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 1.5% से अधिक की तेजी आई. केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की. और भारत का जीएसटी संग्रह जुलाई माह में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया. ये साल दर साल लगभग 15.5% से अधिक की बढ़ोतरी है.
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह हमारे जो शेयर बाजार हैं उनका रवैया कैसा रहा, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया. तो श्रोताओं, राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने इस सप्ताह का समापन मजबूती के साथ किया. फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो क्षेत्र में आई तेजी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई. सेंसेक्स 1,258 अंक बढ़कर 78,094 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 387 अंक बढ़कर 24,883 पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को भारतीय रुपया मजबूत हुआ, जिससे स्थानीय मुद्रा में मार्च के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई. रुपया हर सप्ताह लगभग 1% बढ़कर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.
0: Chisha, let's begin with how the markets behaved this week. We are looking at it like Apache just read that the market

0: markets, both the Sensex and the Nifty, advanced more than 1.6%. What are the factors that have contributed to this rise in the Sensex, in the, both the indices this week?
1: In fact, July has brought very good news for the market as well as for rupee also. I think the performance in the stock market was best among in the last 3 months.
0: Yeah.
1: And one of the reason is like we have seen some kind of disruptions, the second round of war. Now we are seeing some kind of, I mean, the war is now slightly on a back foot. I'm not saying that it has stopped.
0: Yeah.
1: But still there are some indications of peace, and that is giving some confidence to the market also. The second factor which is very important is that now the market is already at a very low level. So it is giving an opportunity for the people to make fresh investment, whether we talk about investors from foreign countries or whether we talk about the domestic one. The third one, the two countries which ruled the market in the month of last week of June and first week of July, South Korea and Taiwan, now that phase is over.
0: Yes.
1: So those investors are also coming to India, and these are the three factors which has given a good performance in month of July.
2: Shishir, bazaar ki vivechna jari rakhenge, magar usse pehle hamare pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Premjeet aur ye hain Delhi se. Premjeet, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochiye.
3: Ji, aap sare team ka abhinandan, pranam, Shishir saab.
1: Pranam.
3: Shishir saab, abhi aaj mera prashn hai wo ye hai ki jab मैं चाय के लिए बुलाया गया और उन साहब से उनको चाय दिया और उन्होंने मुझे इंडियन होते हुए पूछा, डू यू नो दिस, हां सर, लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, ये हनुमान जी हैं और इनका गदा है, श्रीलंका का ये एरिया है जहां हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो वो गोल्ड का और ऑयल का ये सब सर्वे होता है।
0: प्रेम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर बाजार से जुड़ा हुआ,
3: बाजार से वही आ
0: रहा
3: हूं, सर्वे का आज के मार्केट पर हम लोगों का, हमारे देश का कितना कंट्रोल है सर?
0: आप किस सर्वे की बात करें, अगर आप थोड़ा सा खुलासा कर सके तो?
3: कमोडिटी की मैडम, जैसे तेल गैस जो समुद्र में निकलती है ना, उससे एक सर्वे होती है मैडम जी, पहले जहाजों से, तो हम उन जहाजों पे काम करते थे तो उस समय वो डाटा आता था, तो वो लोग हम इस स्टोरी को हमसे शेयर करते थे, तो हमारी उत्सुकता शिक्षा साहब से वही जानने में है
1: जी,
3: मैं हमारे पास,
1: हाँ समझ गया प्रेम जी, जी आप सिस्मिक डेटा की बात कर रहे हैं, अगर आप याद करें तो कल जो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया समुद्र मंथन, उसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा उसमें जो है वो है डेटा के कलेक्शन के ऊपर है और दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका एक्सप्लोरेशन को। तो देखिए, कहीं भी आप पूंजी लगाते हैं, यानी कि आप कोई मशीन लगा रहे हैं, उसके पहले अगर उस जगह की आपको जानकारी नहीं हो तो फिर आपके लिए वो पूंजी जो है वो शायद उतना फायदा आपको नहीं देगी। तो ये जो सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर तरह तरह के डेटा हासिल किए जाते हैं कि वहां पर क्या कुछ संभावनाएं हैं तेल की या गैस की, वो सर्वे काफी अहमियत रखते हैं और इसी वजह से अगर आप समुद्र मंथन योजना के बारे में देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेटा और डेटा एक्विजिशन, यानी कि कोई और भी एजेंसी अगर सर्वे कर रही है तो उसका ले सकते हैं। तो सर्वे की बहुत बड़ी भूमिका है, आंकड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसी के आधार पर आप आगे निवेश की रणनीति बनाते हैं
0: जी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। US stocks rose yesterday to finish a wild July for Wall Street as Amazon leaped, Apple sank, and rising oil prices worsened worries about inflation staying high. The S&P 500 climbed 0.7% after veering between gains and losses through the day. The Dow Jones Industrial Average added 0.5% and the Nasdaq Composite rallied 1%. Shishir, again, I would like a comment from you on the way the US markets, you know, in the, through the month, and specifically because just before the month ended, we had the Fed meeting, you know, where they have decided to keep the rates same. And there was also one other, development where the 30-year Treasury bonds, they had hit almost near highs of 2007. So overall, how do you look at the way the markets, U.S. markets were, in the month of July?
1: You rightly mentioned about the Federal Reserve meeting where they kept the interest rate at the same level.
0: Yeah.
1: But one of the key concerns, there is a rising inflation. And that inflation is what they call it as the imported inflation, because many of the goods which are coming from various other countries, they are brought into the U.S. at a very high tariff. because US imposed tariffs on number of countries, and now that is going to impact the inflation number. That is why Federal Reserve has kept the interest rate at the same level, but they are also giving, or they are rather, I would use the word, they are cautioning that there could be some kind of impact on the interest rate, and if it happens, it's not

0: a good news for India, because when the US takes Federal Reserve of US takes a decision on hiking the interest rate, that means the money will flow out from the country.
1: Yes.
0: And that is not a good news for us.
1: Right.
2: और आलोक कुमार हमें join कर रहे हैं श्रोताओं. आलोक जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी आलोक जी, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हाँ मैडम, गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग.
3: हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है ना कि जैसे शेयर मार्केट में जैसे कोई पर्सन आता है तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि मतलब मैंने ज्यादा बेस्ट किसी पर्सन के लिए F&O सेगमेंट हो सकता है, या फिर डेरिवेटिव जो कैश सेगमेंट होता है जिसमें डिलीवरी लेते हैं, या वो ज्यादा बेस्ट है. मतलब क्योंकि मैं नया था तो
0: आलोक जी, आलोक जी एक मिनट में रोकूंगा. आप व्यक्तिगत निवेशक हैं या कोई?
3: मैं
0: आप
3: व्यक्तिगत निवेशक हूँ. मैं पर्सनल इंडिविजुअल हूँ मैं. और क्योंकि मैंने अपना लॉस कर दिया था F&O सेगमेंट में. हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास डीमैट ओपन कीजिए, हम आपको प्रॉफिट करा के देंगे F&O सेगमेंट में.
0: अच्छा,
3: तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देंगे. अभी कि कोई मुझे कहता है कि नहीं F&O बहुत डेंजर सेगमेंट है, उसे मत एंटर कीजिए.
2: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी, हम आपकी बात समझ गए हैं. और ये बहुत ही आपने बेसिक कोई भी जो शिशिर नया निवेशक है उसके मन में यही सवाल होता है कि बाजार में इतनी अनसर्टिनिटीज होती हैं और इतना डर लगता है, इतना भय लगता है कि हमारी जो बचत है, हमारी जो जमा पूंजी है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए. तो आपसे हम अपने बाकी श्रोताओं के भी उपलक्ष्य में जानना चाहेंगे, और आलोक जी तो है ही है, आप बताइए कि किस तरीके से निवेशक बाजार में घुसे वो SIP अच्छा होगा नए निवेशकों के लिए, वो F&O डेरिवेटिव मार्केट्स अच्छा होगा या कैसे?
0: देखिए, सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 निवेशकों ने F&O में पैसा गंवाया है, और पैसा अच्छा खासा गंवाया है. क्यों गंवाया है? क्योंकि F&O या जिसको आप डेरिवेटिव मार्केट भी कह लीजिए, ये बाजार ऐसा है जो कि छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, ये बड़े और बहुत ही परिपक्व निवेशक के लिए है. और ये दरअसल नकदी बाजार से सुरक्षा मुहैया कराने का एक माध्यम है. आप नए हैं, आप एक व्यक्तिगत निवेशक हैं, आप नकदी बाजार में जाइए, आप म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल करिए, जहां पर आपके लिए आपने पैसे दिए, आपने शेयर खरीदे, डिलीवरी ली, अगले कुछ समय में जब भी आप चाहें आप उसको बेचिए, आप अपना पैसा लीजिए, घाटा मुनाफा जो भी है उस हिसाब से आप कर का भुगतान कीजिए, कहानी खत्म है. आप यदि कुछ ज्यादा बड़े सौदों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा जिसकी आपको समझ नहीं है. दूसरी बात, जो F&O मार्केट है वो क्यों लोगों को खींचता है? इसलिए खींचता है क्योंकि लोगों को लगता है मार्जिन पे करेंगे, यानी कि 100 रुपए के माल के लिए 5 रुपए पे करेंगे और हम सौदा कर सकते हैं. लेकिन वो 95 रुपए आप नहीं भी पे कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर वो देनदारी बन जाती है, और वो 5 रुपया दे करके आप सोचते हैं कि हमने बड़ा सौदा कर लिया है, वो उचित नहीं है. तो मुझे लगता है कि अगर आप एक परिपक्व निवेशक हैं, आपको बहुत अच्छी बाजार की समझ है, थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें लगा सकते हैं. लेकिन आप अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एक आम निवेशक हैं, तो आपके लिए नकद बाजार एक बेहतर विकल्प.
1: लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉल. अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली, इट्स टिग्रिशस विद अस फ्रॉम दिल्ली. आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछे.
4: हेलो जी.
1: जी हाँ जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछे. जी सवाल पूछे.
4: तो बैंक में एक जानकारी दी थी कि 50,000 रुपए जमा करके एक FD बनती है 444 दिन के लिए, तो ऐसा कोई होता है प्लान?
0: अलग अलग बैंकों की अलग अलग योजनाएं होती हैं कुछ खास समय के लिए, जैसे वो 555 दिन या 444 दिन की योजनाएं बनाते हैं. और अगर जो भी एक जिसको कहें कि हमारे जो 12 सरकारी बैंक हैं या 22 निजी बैंक हैं या फिर विदेशी बैंक हैं, वो इस तरह की योजना लेकर के आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. हाँ, याद रखिए, कोई असंगठित क्षेत्र से आकर के आपको कहता है कि आप 444 दिन के लिए आप पैसे लगा दो और हम आपको 12% और 15% का ब्याज देंगे, भूल के मत जाइएगा. ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूल भी डूब जाएगा.
1: पर शिशिर यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि 50,000, तो जहां तक हमारी जानकारी कोई ऐसे कोई खास
0: नहीं, नहीं कोई सीमा नहीं होती है. आप इसमें 444 दिन, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई सरकारी बैंक जो है वो जमा के लिए विशेष अभियान चलाते हैं. क्योंकि होता क्या है कि आप जब जमा से पैसे आएंगे तभी तो आप कर्ज दे पाएंगे, और कर्ज देने की रफ्तार अभी ज्यादा है, जमा कम आ रहे हैं. तो इसमें एक खास समय के लिए इस तरह के, जैसे कहते हैं ना, आपको याद होगा कि एक खास कंपनी का जो जूता चप्पल होता था वो 99 पे आकर टिक जाता था.
1: बिल्कुल.
0: तो ये हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि अच्छा 333, 444, 555, 666, तो ऐसे

0: जो है ये आपको आकर्षित करने के लिए है। बस वही मैंने कहा कि एक ध्यान रखिए कि आपको कौन आपके लिए प्रस्ताव दे रहा है, एक नियमित सरकारी बैंक या निजी बैंक या विदेशी बैंक या कोई एक असंगठित संगठन, उससे दूर रहें।
1: शशि जी, एक और बहुत ही आधारभूत सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो अमूमन सभी निवेशकों के मन में और खास करके हमारे जो मार्केट मंत्र के जो श्रोता है उनके मन में रहता है, वो ये कि अपना पोर्टफोलियो डिविजन कैसे करें, कितने प्रतिशत, अगर हमारे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं और हम मैं उसमें से कितना पैसा कहां पर किस तरीके से डिवाइड करूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मैं अपना एक आउटपुट उस का निकाल पाऊं। हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले अमित झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। अमित झा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
0: अमित जी सवाल पूछिए।
1: अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हेलो
0: जी, सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार सभी को।
0: नमस्कार
2: सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये सर कि जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छे स्थिति में तो है सर। हेलो।
0: हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं।
2: लेकिन सर हम उनके जो टेलीकॉम के कंपोनेंट है अभी भी हम चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जबकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गुजरात है या मध्य प्रदेश है ऐसे जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट को अपने ही देश में उत्पादन करके वो पूरे हैंड असेंबलिंग करके हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे? धन्यवाद।
0: अमित जी देखिए, अभी दो जगहों पर सेमीकंडक्टर, दो या तीन जगहों पर सेमीकंडक्टर का जो है वो प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगले दो से तीन वर्षों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। देखिए अभी जब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुआ और जिसके बाद मोबाइल हैंडसेट एक से एक बनने लगे हैं, हमारे यहाँ बनना नहीं कहना चाहिए, असेंबलिंग होने लगे, तो वहां पर जो कल पुर्जे हैं, हर तरह के कल पुर्जे आप नहीं बना पाएंगे, उसकी एक विशिष्टता होती है, उसकी पेटेंट होती है। जैसे मैं आपको दवा का भी उदाहरण दूं कि हम दवा के मामले में दुनिया के लिए फार्मेसी का हब कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि कच्चा माल है दवा का, वो हमें आयात करना पड़ता है और निर्भरता कम हुई है लेकिन अभी भी आयात करना पड़ता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले दो से तीन वर्षों के दौरान जो है हम इनमें से कई कल पुर्जे और खासतौर पे जो चिप की बात है वो हम अपने यहाँ उत्पादन करना शुरू कर पाएंगे, उसके ऊपर हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म होगी।
1: और हमारे साथ अनुभा एक और कॉलर जुड़े हैं, इनका नाम है SPS जैन और ये है नोएडा से। बहुत बहुत अभिनंदन आपका कार्यक्रम में महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
3: ये अभी मैं सुन रहा था किसी व्यक्ति ने 444 दिन का एक डिपॉजिट स्कीम के नाम लिया था, तो मैं खास बैंक का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन कहिए तो मैं बता देता हूँ, स्टेट बैंक का ये मैं काफी डिपॉजिट रखा हुआ है, आई एम सुपर सीनियर, मुझे 7.05 दे रहे हैं और काफी, और दूसरी स्कीम ये SBI का कंप्लीट टोटल सेफ स्कीम है, बस यही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था।
1: चलिए आपने ये जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
0: अब इनका सवाल जो था, चूंकि जैन साहब ने हमारे लिए जो एक धर्म संकट होता ना कार्यक्रम की, एक ऐसी प्रस्तावना है कि हम किसी संस्था का नाम नहीं लेते हैं, तो चलिए जैन साहब ने हमारा धर्म संकट दूर किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मूल सवाल था कि कितना पैसा कहाँ रखें,
1: प्रतिशत,
0: हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं मैं, तो जैसे होता ना कि एक पहला फॉर्मूला जो है वो 60-20-20 का है। 60-20-20 क्या होता है कि 60% आप खर्च करते हैं, 20% आप बैंक में रखते हैं ताकि वो एक तरीके से आपको सुरक्षा दे, और 20% आप कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। आप कहेंगे बैंक में क्यों रखते हैं और निवेश अलग, दोनों के लिए अलग क्यों रखा गया? क्योंकि बैंक आपके लिए क्या है ना कि आपके लिए एक डिमांड है, आपको जब पैसे की जरूरत है आप ATM से निकालते हैं, जब कोई कहते हैं ना कि परेशानी और विपदा बता के नहीं आती, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी रकम होनी चाहिए जो एनी टाइम मनी, इसीलिए हम ATM कहते हैं। तीसरा जो 20% है, अब उसकी हिस्सेदारी पे आ जाए, अब उसमें क्या होता है कि आपकी उम्र क्या है, अगर आप मान लीजिए कि 30 से 40 साल से कम उम्र के हैं तो आप उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसे मैं कहूंगा कि 70% या 60% तक हिस्सा आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं, बाकी जो 40% है उसमें से 10% आप सोने में लगाएं और बाकी जो 30% है वो म्यूचुअल फंड में लगाएं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा तो फिर आप 60 को घटाते जाएं, वो आप 50 पे लाएं, 40 पे लाएं और फिर वहां पर जो आपका

0: इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि वो सुरक्षा है, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी कमाई नहीं होती है और हमें नियमित आय की जरूरत है, तो वहां पर हम जाएं, जैसे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट है या डाकघर की बचत योजनाएं हैं, उनमें हम लगाएं जिसमें हमारा मूल और ब्याज दोनों सुरक्षित रहे। बैंक और डाकघर में एक बड़ा अंतर यह हो जाता है कि डाकघर में जो आप पैसा रखते हैं उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार की होती है, बैंक में जो आप रखते हैं वहां पर बैंक की गारंटी होती है कि आपको वापस करेंगे, लेकिन अगर बैंक बंद हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए तक ही जो है वो प्रति खाते आपको मिल पाते हैं। तो एक हिस्सा अगर आप डाकघर की बचत योजना में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है।
1: और इस बीच वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस, शंकर इज कॉलिंग अस फ्रॉम भोपाल। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्र एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: सर नमस्ते, मार्केट मंत्र टीम को
1: जी।
2: इन रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन डॉलर सॉरी रुपी हैज डिप्रिशिएटेड क्वाइट अ लॉट एंड इट बैंक डिपॉजिट रेट्स आर नॉट कवरिंग द इन्फ्लेशन। Is there any way or any other option available for retail investors like us who can invest probably in dollar deposit under LRS scheme? LRS scheme में क्या dollar deposit हम लोगों के लिए available है Indian resident Indian taxpayer के लिए? Because $2,500 बाहर भेज सकते हैं but share खरीद सकते हैं क्या? Deposit हम दे सकते हैं क्या? So that we get the benefit of that higher interest sorry lower interest rate but dollar appreciation।
0: नहीं देखिए, ऐसा है ना कि आप बाहर जो पैसा भेजते हैं उसमें बहुत सारे के जो है वो तकनीकी जो कहते हैं कि एक जरूरतें होती है वो पूरी करनी होती है, और दूसरी बात है कि आपके पास यहाँ पर भी अगर आप जैसे मैं अभी प्रोपोर्शन की बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर कितना रखें, तो अगर आप अपने डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, जैसे आपने आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 50 वर्ष के है, एक निश्चित हिस्सा आप शेयर में, एक निश्चित हिस्सा म्यूचुअल फंड में, एक निश्चित हिस्सा जो है वो बैंक में, और एक निश्चित हिस्सा जो है अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में रखते हैं, तो आप ये जो रिटर्न है ना उसको भले ही ये ना कहें कि हम कहें कि 10% हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि बाहर के देशों में ब्याज दर इतना भी ज्यादा नहीं है जो कि आपकी अपनी जो महंगाई दर है उससे वो उसका सामना कर सके। आप ये कर सकते हैं कि डॉलर, तो डॉलर का अगर आप जो बढ़ोतरी का फायदा उठाने की बात करेंगे तो वो आप यूएस में ही रख सकते हैं, और यूएस की जो नियमन है, यूएस की जो व्यवस्था है, उसके लिए आपको बहुत सारे जो तकनीकी पेचीदगियां हैं उनको आपको पार करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सुझाव इतना ही है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, तो आपके लिए ब्याज दर की जो आप बात कर रहे हैं कि कम मिलता है वो आपको आप देखेंगे कि आपका बढ़ा है।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं, इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए दिए गए हैं। Let's move on to the next story. Oil marketing companies have reduced the price of a 19 kilogram commercial LPG from today. After the price cut, the new price of commercial LPG cylinder in Delhi will be 2,738 rupees. The price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata is 2,872 rupees and 50 paisa, while in Mumbai it will be 2,691 rupees and 50 paisa, and in Chennai it is going to be 2,906 rupees. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business.
3: और पुणे से हमारे साथ कुमार जुड़ रहे हैं। कुमार जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी गुड इवनिंग, नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई नए पर्सन हैं और अगर हमको अच्छी तरह से सीखना है शेयर मार्केट में निवेश किस तरह से करें, तो हम कहाँ से सीख सकते हैं, कौन सा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सीख सके, जैसे कि डेरिवेटिव सेगमेंट हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो या डिलीवरी हो या इंट्राडे हो, ये हम किस तरह से सीख सकते हैं? अच्छा, कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अच्छी तरह से सीख के एक्सपर्ट हो जाए।
0: देखिए कुमार जी, एक्सपर्ट बनने में तो समय लगता है, और दूसरी बात ये कि आप जैसे ही गूगल करेंगे आपके सामने इतने लिंक आ जाएंगे, इतने

0: सारे इन्फ्लुएंसर और जो सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट हैं वो आ जाएंगे कि आपके लिए हो सकता है कि सही और गलत के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि कुछ पहले क्या होता है बेसिक, जिसको कहते हैं ना क ख ग ABC सीखना हो तो आपके लिए बहुत अच्छा और सस्ता और बिल्कुल मुफ्त में, जिसको मैं कहूँ सस्ता नहीं कहना चाहिए, वो जैसे BSE की वेबसाइट पर आप जाएंगे वहाँ पर भी कई तरीके के इन्वेस्टर एजुकेशन के प्लान जो है वहाँ पे मटीरियल्स अवेलेबल हैं। SEBI की वेबसाइट पर जाकर के इन्वेस्टर मटेरियल्स आप देख सकते हैं, उनको पहले पढ़िए, उनको समझिए कि आप सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे और फिर उसके बाद आप जो इतने भी हमारे जो बिजनेस चैनल्स हैं या बिजनेस अखबार है उनको नियमित तौर पर पढ़िए, तो आपकी जब समझ बेहतर होगी तो आप इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ बनने की बात है, कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है।
1: और सबसे बड़ी बात कुमार जी कि आप मार्केट मंत्र कार्यक्रम के साथ रोजाना जुड़े रहिए ताकि आपको रोजाना नई नई अपडेट्स मार्केट्स के मिलती रहे और आप इसी तरीके से सीखते रहें।
2: या दैट्स राइट प्राचीन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कलेक्शंस इन द लास्ट मंथ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज टू 2,11,205 crore रुपीस, मार्किंग अ 15.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज फ्रॉम 1,83,065 crore रुपीस इन July 2025। According to the provisional data released by the Finance Ministry, gross domestic revenue stood at 1,44,695 crores, up 10.1% from a year ago. GST collections from imports surged 28.8% to 66,511 crore rupees, providing a boost to the overall monthly mop up. Moving on, the Income Tax Department today said that over 5.9 crore income tax returns were filed for the assessment year 2026-27 by July 31st, 2026. Thanking taxpayers in a social media post, the department said that their trust and timely compliance provide the energy that fuels India's growth.
1: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सभी पात्र महिलाएं dly.delhi.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए दिल्ली बजट 2026-27 में 5,110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
2: एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। ऑयल प्राइसेस एंडेड द मंथ ऑफ जुलाई विद देयर बिगेस्ट मंथली गेन सिंस मार्च एज कंसर्न्स ओवर ग्लोबल क्रूड फ्लोज माउंटेड अमिड इरानियन रिपोर्ट्स दैट सम टैंकर्स वर फोर्स्ड टू टर्न बैक इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। फॉर जुलाई ब्रेंट गेन्ड 24% एंड WTI रोज 21%। Shishir, you know, because we are talking about, we just read a story about the Income Tax Department and it till date, when yesterday was the last date for certain people, 5.9 crore income tax returns have been filed. How important is this for the overall economy?
0: Yeah, this year there is a change in the system.
2: Yeah.
0: Earlier there used to be July 1 for ITR 1, yes. ITR 2, ITR 3 and ITR 4. Now we have July 1 for ITR 1 and 2 and August 31st for ITR 3 and 4. So those who have not filled ITR 1, 2, even if they are eligible, now they will have to pay fine up to Rs. 5,000.
2: Okay.
0: And they will not get certain kind of benefit. They will have time only till December 31st. So that is a very important clarification for the taxpayers. They should remember this thing. They can do it even now, but they will have to pay fine.
1: Shishir ji, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices register over 1.6% weekly gain. Center releases over 1.09 lakh crore rupees additional installment of tax devolution to states. And India's GST collections surges over 2.11 lakh crore, marking 15.4% year-on-year increase in July. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और ये वक्त है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत की वो महफिल जिसमें हम सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों को लेकर हाजिर हैं आपके अपनी इस पसंदीदा महफिल में। मैं हूं आपके साथ फेरोज, तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलोस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के यानी 1945 से लेकर 1965 और 68 के दरमियान के नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं, और ये वो नगमे हैं जो अमर हो गए। इस महफिल में सबसे पहला नगमा फिल्म CID से। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म आई थी 1956 में, जिसमें मुख्य किरदार में थे देवानंद, वहीदा रहमान, के एन सिंह, जॉनी वॉकर, कुमकुम, मीनू मुमताज वगैरह। इस फिल्म के गीतों को बेहद खूबसूरती से लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब और साथ ही साथ जानिसार अख्तर साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा आपके लिए शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, ये नगमा है फिल्म संगम से और यह फिल्म आई थी 1964 में। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में राज कपूर साहब, रणधीर कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, इफ्तिखार, राज मेहरा, नाना पालिस्कर, ललिता पवार, हरीश शिवदासा

इफ्तिखार, राज मेहरा, नाना पालिस्कर, ललिता पवार, हरीश शिवदासानी और अचला सचदेव वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। पर मैं जो नगमा आपके लिए लेकर आया हूँ उसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें हैं मुकेश और वैजंती माला की।

संगम फिल्म का यह नगमा था मुकेश साहब और वैजयंती माला की बेहद खूबसूरत आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत के इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और भी बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं। और अगला गीत एक ऐसी ही फिल्म से जो आई थी 1958 में, जिसका नाम था परवरिश। एस बैनर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लेखक थे एस एम अब्बास और सागर उस्मानी और इस फिल्म के निर्माता थे महिपात्रे शाह। इस फिल्म में राज कपूर साहब, माला सिन्हा, महमूद, नासिर हुसैन, ललिता पवार वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी और मन्नड़े साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में और बहुत ही खूबसूरत संगीत है दत्ताराम वाडेकर का।

इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद सुरभि रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने आज कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे

0: स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग ज्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आज रात ही नरेंद्र बेरवाल पुरुष 90 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड के दमार थॉमस से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts.

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड दिल्ली 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को कहीं छू जाएं। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी क्षितिज, जिसे लिखा है शीतल शाह ने।
1: कुछ भी नहीं।
0: किसी शायर की इन पंक्तियों ने मेरा दिल छू लिया। कहां सुखाऊं तुम्हारी यादें, बारिश बाहर भी है और भीतर भी। उनके इस ख्याल के साथ मैंने अपनी बात भी जोड़ दी। ये तो जमी की फितरत है कि हर चीज सोख लेती है, वरना हमारे आंसुओं का भी एक समंदर होता। क्या मेरा नाम भी सोच समझ कर रखा गया था? अवनी, अवनी यानी जमीन, धरती, जो सब कुछ अपने में समा लेने की क्षमता रखती है।

अवनी कितना भी ऊंचा उठने की कोशिश करे, आकाश को छू पाती है भला, नहीं ना? ये सब मैं डायरी के पन्नों पर उतार रही हूँ। शायरी की बातों को अपना हमदर्द माना है और इन पहाड़ियों की बुलंदियों को अपना हमसाया।

हूँ, आज का हर लम्हा उसे जमाने का अक्स बनाकर अपनी रूह में उतार लेना चाहती हूँ। एक कामयाब करियर और बुलंद हौसलों वाली डॉक्टर दीदी हूँ ना मैं ऐसे किरदारों से अब दूर रहना चाहती हूँ और बीते 18 सालों में अपने अस्तित्व का हिस्सा बने उस मुखौटे को आज के दिन बस मैं उतार कर रख देना चाहती हूँ और बैठना चाहती हूँ आईने के सामने फुर्सत के साथ। साल के बाकी दिनों में ये मौका नहीं मिलता मुझे। क्षितिज पर सूरज के आने से पहले मैं अस्पताल के राउंड शुरू जो कर देती हूँ और बादलों में लुका छिपी खेल रहे चांद के आने के बाद ही वापस लौटती हूँ। अस्पताल में तो मसरूफियत ही रहती है, मरीजों को राहत देना ये मेरा पेशा नहीं जुनून है। और किसी शायर के नजरिए से कहूँ तो दर्द दिल की दवा में अपने किसी पुराने जख्म का मरहम ढूंढ लेती हूँ। जाहिर सी बात है ऐसे में मुझे न अपनी सांसों का एहसास रहता है न अपने दिल की धड़कनों की मौजूदगी का पता। 18 सालों से बस यही क्रम चलता है, सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। सालों से यही रवायत रही है कि 1 दिसंबर का दिन मैं अस्पताल के पीछे बने यतीम खाने में बच्चों के लिए न्योछावर करती हूँ। वहाँ बच्चे भी शिद्दत से मेरा इंतजार करते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट लंच और शाम के कल्चरल इवनिंग हम सब साथ रहते हैं, डांस सेलिब्रेशन करते हैं और बच्चों को डांस सिखाना तो सिर्फ बहाना होता है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, जी भर कर नाचती हूँ। खुद भी बचपन में कथक सीखती थी लेकिन जिंदगी मुझे कहीं और लेकर गई, हालात ने कथक का शौक छीन लिया और मीठी मुस्कानों और चाशनी सी बातों से लबरेज ये दिन मेरे लिए मानो सहरा की तपिश में ओस की बूंदों जैसा राहत देता है। बात ये नहीं है कि उस नन्हे फरिश्तों को मेरी दरकार है बल्कि सच बताऊं मैं खुद ही इन यतीम बच्चों की मासूमियत में सुकून के पल जीती हूँ। हिमाचल की हसीन वादियों में बसा ये छोटा सा गाँव, ये अनाथल है, ये मेरा दूसरा घर था और पहला घर वो तो अस्पताल है ना। कस्बे के पहाड़ी लोगों से रूहानी रिश्ता बन गया था और ये लोग हैं मेरे लिए मेरी छोटी सी दुनिया। आज सुबह मैं जल्दी तैयार हो गई क्योंकि बच्चों के पास जाने से पहले केक भी तो लेकर जाना था। गौरी से पूछा, गौरी केक का ऑर्डर तो दे दिया था ना? हाँ दीदी केक तैयार है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। गौरी ने उठाया और जवाब में कहा, हाँ हाँ वो अभी यही है, जी देती हूँ दीदी, एमरजेंसी वार्ड से फोन है। कलाई पर घड़ी बांधते हुए मैंने रिसीवर उठाया, सामने से संदेश था, वार्ड में भर्ती युवती के सर पर चोट लगी है, खून काफी बह गया है, ड्यूटी डॉक्टर ने फोन करके सहायता के लिए निवेदन किया। मैम शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरे कदम फौरन वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। सामने बेड पर बेहोश और लहू लुहान मरीज की ड्रेसिंग की जा रही थी। ड्यूटी डॉक्टर ने अपडेट देते हुए बताया, ये मेडिकल स्कूल के जो कल्चरल प्रोग्राम था उसमें भाग लेने आई थी ये युवती, सर और पीठ पर गहरी चोट आई और मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। मैंने नर्स से पूछा, साथ में कौन है? बताया गया कि 2 क्लासमेट्स हैं। मैंने युवती का चेहरा देखा और ब्लड प्रेशर नापना शुरू किया और स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा, पर ये क्या, एक पल के लिए लगा जैसे मैं अपने ही दिल की धड़कन सुन रही हूँ। इस वक्त दिल में ये कैसी कश्मकश चल रही है, एक डॉक्टर की तरह तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पा रही, आखिर क्यों इतनी जज्बाती हो रही हूँ। मैंने उस युवती की ओर ध्यान लगाने की कोशिश की, फिर ख्याल आया इस वक्त तो मुझे बच्चों के बीच होना चाहिए था केक काटते हुए, पर मौके की नजाकत है, इस बच्ची का इलाज उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी मरीज की दोनों क्लासमेट्स वहां आ गईं। परी कैसी है? इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी फैमिली में कोई और साथ है? ये पूछते हुए मैंने ऑपरेशन के लिए निर्देश दे दिए। करीब 12 बजे तक ऑपरेशन करके बाहर आ गई। पहली बार इतने सालों में मुझे अपने हाथों में कंपन महसूस हो रही थी। क्यों इतनी नर्वसनेस हो रही थी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या उन बच्चों के पास जाने की इतनी तलब थी कि काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी? तभी इंटरकॉम पर गौरी को निर्देश दिया, प्लीज गौरी तुम केक बच्चों तक पहुंचा देना और ऐसा करना गिफ्ट्स भी ले जाना, मैं लंच तक वहां पहुंच जाऊंगी। वार्ड में जब मैं लौटी तो दोनों क्लासमेट्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। मैंने पूरी जिंदा दिली के साथ कहा, नॉट टू वरी, शी वुड बी बेटर सून, थैंकफुली देर इज नो इंटरनल इंजरी। नर्स से मरीज की केस शीट मांगी और उन दोनों से पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कहाँ से आए हो तुम? मैं पूर्वी और इसका नाम खुशी है, हम परी के क्लासमेट्स हैं, दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ इंटर कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम के लिए आए हैं। परी को कथक डांस का बहुत शौक है और परफॉर्मेंस के वक्त जो ये टेम्परेरी स्टेज बना था ना इसका हिस्सा गिर गया और परी फिसल गई। तभी खुशी की इमोशनल आवाज सुनाई दी,
आज परी का बर्थडे भी है।

हम लोग तो उसको शाम को सरप्राइज पार्टी करने वाले थे। ओह, केशिट हाथ में ली। दोनों ने गुफ्तगू जारी रखी। डोंट वरी, शाम को आप यहीं पर हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। बस इंस्टेड ऑफ केक आप उसे एंटीबायोटिक्स खिलाना। और आप अभी ऐसा करो, दोनों कैफेटेरिया में जाकर कुछ खा लो। आपकी दोस्त को तो होश में आने के लिए समय लगेगा। इट्स ओके मैम, क्योंकि अंकल परी के पापा थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचते होंगे, उनको साथ ही ले जाएंगे। ये बात कानों में जाए उससे पहले मेरी नज़र मरीज की केस हिस्ट्री पर पड़ी। परी रायजादा, पिता का नाम आकाश रायजादा, जन्म तारीख 1 दिसंबर, और घर का पता, ओह माय गॉड, मुंबई। हाथों में कंपन, दिल में तूफान, और आंखों में आंसुओं का सैलाब, मन में कश्मकश। ये महज इत्तेफाक है या गहरी नींद में गुजर रहा सपना या किस्मत का कोई बेहुदा मजाक?

0: अपनी दुविधा में जूझती हुई गला साफ किया और पूछा, वो परी के मम्मी पापा को इन्फॉर्म तो कर दिया है ना?
1: यस डॉक्टर, सुबह ही अंकल को बता दिया था। इनफैक्ट वो तो यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे।

मैं बुत सी बैठी रही। तभी ड्यूटी डॉक्टर और नर्स आए, बोले, मैडम पेशेंट को होश आ गया है। किसी मरीज के होशमंद होने की खबर अमूमन मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती है, मानो बारिश की बौछार के बाद सूरज की लाली पाकर इंद्रधनुष सा खिल गया हो। लेकिन इस वक्त के बाद मेरे सीने में मानो कोई जलजला पैदा कर गई। नर्स के साथ आईसीयू की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम बोझिल सा महसूस हो रहा था। अंदर गई तो देखा सामने परी थी, पर दिल में उलझन थी। सामने लेटी मरीज, ये मेरा अतीत है या मेरा वहम? जिस मरीज के शरीर से बहता लहू मैंने रोका था, क्या यह मेरा खून है?

ड्यूटी डॉक्टर ने पैरामीटर चेक किए और परी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वो बोली, आई एम फाइन। मैं बस उसको देखती रही, तय नहीं कर पा रही थी कि एक डॉक्टर की हैसियत से ड्यूटी अदा करूं या 18 साल पहले जिस ममता को दफनाने की कोशिश की थी ना मैंने, उस चिंगारी को हवा दूं, जिस बेटी को किस्मत ने बेरहमी से मुझसे छीन लिया था। क्या क्या आज तकदीर उसे मेरे पास ले आई है? क्या क्या ये वही परी है?

0: परी।
1: क्या ये वही परी थी? सोचते हुए मैं बाहर निकली तो वेटिंग लाउंज में नजर डाली, सामने थे आकाश। आकाश रायजादा मोबाइल पर किसी से बात करते हुए। 18 साल बाद भी उनका चेहरा पढ़ पा रही थी मैं। फर्क इतना आया था कि आकाश की गहरी आंखों के आगे

इससे पहले कि हम दोनों की नजरें टकराएं, मैंने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का प्लेकार्ड लगा दिया। और उसके बाद न जाने कितनी यादों की बिजलियां ज़हन में एक साथ टूट पड़ी।

मेडिकल कॉलेज के वो दिन, आकाश, शियाना और मैं, तीनों के अलग मिजाज। मैं चुपचाप और पढ़ाई और करियर के लिए जान देने वाली, शियाना हलमस्त नामी गिरामी रईस खानदान की इकलौती वारिस। आकाश और शियाना स्कूल के दिनों से ही फैमिली फ्रेंड्स थे और कॉलेज में दोनों एक कपल के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वक्त वक्त के समीकरण बदलते हैं, कुछ घटता है तो कुछ जुड़ता है। उस दिन शियाना ने कहा भी, अवनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकाश, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ खींच रही हो, देखो ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बदला लूंगी, शरारती अंदाज में उसने कहा तो कुछ सच सा झलक रहा था उसमें। वो मेडिकल कॉलेज का आखिरी साल था। आकाश ने उस दिन मेरी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर कहा था, पूछा था, अवनी बनोगी मेरी हमसफर, मेरी राह में हजार दुश्वारियां हैं, कामयाब डॉक्टर बनने का जुनून है मुझ पर तुम्हारा साथ पाकर मैं कुछ भी कर लूंगा। उसकी आंखों में, उसकी आवाज में संजीदगी थी। उन आंखों में अपना अक्स देखकर कहीं खो सी गई थी मैं और नजरें झुकाकर हां कर दी थी। फाइनल परीक्षा के बाद हम विवाह के बंधन में बंध गए थे।

शियाना ने जब सुना तो बोला, अवनी तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का अपहरण कर ही लिया ना, और मैंने अपराध बोध में सर झुका लिया था। सासू माँ भी इस विवाह से खुश नहीं थी, घर में तनाव सा रहता था। मैंने बहुत कोशिश की, सोचा आकाश के लिए मैं समझौता कर लूंगी। समय बीता, उस शाम आकाश ने खबर सुनाई, उन्हें US का वीजा मिल गया था। तुम जानती हो ना अवनी, ये US की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सासू माँ ने तभी याद दिलाया, आकाश शियाना भी तो वही है ना। माँ, मेरे रिसर्च के काम का, मेरी स्कॉलरशिप का शियाना से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पर जा रहा हूँ। सासू माँ बोली, ओहो कोई बात नहीं, चलो पुराने दोस्त की कंपनी तो रहेगी। न जाने क्यों मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे, और वहाँ आकाश वो बहुत खुश था, जोश और जुनून से तैयारी में लगा था, और मैं किसी और मोड़ पर खड़ी थी। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इधर मैंने एक नए जीवन की आहट महसूस की, मैं माँ बनने वाली थी, और उधर खबर पाई मेरे पापा को कैंसर था।

की रुकावट नहीं बनना चाहती थी। जिंदगी का वो मोड़ जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम एक दूसरे से दूर हो गए थे। मेरी नन्ही परी ने मेरी झोली खुशियों से भर दी और फिर प्रैक्टिस छोड़कर मैं गृहस्थी और बीमार पापा की देखभाल में जुट गई। इधर नन्ही परी और उधर अकेले पापा।

डॉक्टर ने उन्हें मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। मैं परी को सासू माँ के साथ छोड़कर मुंबई ले गई थी पापा को। वही पापा जिनकी उंगली पकड़कर चली थी मैं, उनका हाथ पकड़कर थेरेपी के लिए ले गई मुंबई। वो कसौटी का क्षण था। इस बीच आकाश आए थे यूएस से इंडिया। सासू जी बहुत बीमार जो थी, हम दोनों ने बातचीत की और यही निर्णय लिया कि आकाश माँ और परी को लेकर यूएस चले जाएंगे। सोचा था बाद में मैं भी चली जाऊंगी। सोचा परी के पास तो उसकी दादी है, उसके पापा आकाश हैं, यहाँ मेरे पापा के लिए तो सिर्फ मैं ही थी।

0: चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली।
1: आकाश सासुमा और परी को लेकर चले गए थे यूएस। ये बात 18 साल पहले की है। वो जमाना था जब ट्रंक कॉल और लैंडलाइन का दौर था। विदेश के लोगों से पत्राचार में भी लंबा वक्त लगता था। यूएस जाने के बाद आकाश के पूरे 2 खत आए थे, जबकि मैं हर सप्ताह उन्हें खत लिखती थी। मैंने ये सोचकर दिल को समझा लिया था कि वो बहुत व्यस्त हो गए हैं, पर मैं तो एक माँ थी ना, नन्ही बेटी के लिए दिल मचल मचल जाता था। उस दिन मैंने फोन लगाया, सासू माँ से बात भी हुई, पूछा, मम्मी परी कैसी है? अरे मजे में है वो तो, शियाना और आकाश उसे थीम पार्क घुमाने लेकर गए हैं। ओह तो शियाना भी थी वहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ। और मैं यहाँ अकेली थी। मैंने अपने आप को संभाला और कहा, प्लीज आकाश को मुझसे बात करने को कहो ना बेटी। अरे वो अपने किसी महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पर काम कर रहा है, खत्म होगा तो फुर्सत से बात कर ही लेगा।

मैं मन महसूस कर रह गई। इधर पापा की थेरेपी का अंतिम सेशन चल रहा था। बहुत डर सा लगता था उन दिनों। आकाश को बहुत मिस करती थी। जी चाहता था उसके कंधे पर सर रखकर रो दूं।

अपने गुरूर को ताक पर रखकर फिर फोन लगाया। हेलो हेलो, हाँ अवनी। आकाश, मैंने पिछले दिनों तुम्हें कितना याद किया, कितने सारे कॉल लगाए, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। ओ सॉरी सॉरी अवनी, रियली आई एम गेटिंग वेरी लेट। शियाना नीचे कार में इंतजार कर रही है, मुझे एयरपोर्ट जाना है और हम दोनों को कैलिफोर्निया के लिए निकलना है। सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक ओवरसीज कवर भेज रहा हूँ, तुम वो देख लेना, एवरीथिंग विल बी क्लियर, डोंट वरी। ये कहकर आकाश ने फोन रख दिया और कुछ दिन बाद मुझे वो लिफाफा भी मिल गया। उसमें मेरे नाम $20,000 का चेक था, साथ में थे तलाक के कागजात। सब कुछ क्लियर हो गया था। प्यार नाम की एक पट्टी जो मेरे आंखों पर चढ़ी थी, वो पट्टी अब हट चुकी थी। मेरी खुददारी को इससे बड़ा तमाचा नहीं मिलता। मैंने फौरन फोन लगाया। सासू माँ की आवाज कानों में पड़ी। मम्मी जी, मुझे आकाश से बात करनी है। क्या हुआ, पैसे कम लगे क्या? पैसे? वो चेक तो मैंने फाड़ कर फेंक दिया है माँ, लेकिन ये तलाक के कागजात, ये कागजात कैसे? तुम्हें अगर बात करनी है तो वकील से करनी होगी। आकाश, वो अब शियाना के साथ बसना चाहता है। यानी यानी मेरा शक सही था। लेकिन परी, परी मेरी बेटी, मुझे तो परी चाहिए। देखो अवनी, बच्ची की कस्टडी के लिए तुम्हें वकील से बात करनी होगी। यहाँ के कानून सब अलग हैं। वैसे भी बच्ची की कस्टडी का दावा करना बेकार है। क्या तुम केस का खर्चा झेल पाओगी? और माना परी की कस्टडी तुम्हें मिल भी गई, तो क्या तुम अपने बलबूते पर उसकी परवरिश कर पाओगी? क्यों आकाश की खुशियों के बीच आ रही हो? वो शियाना के साथ बहुत खुश है। मैं अचकचा कर रह गई।

इससे पहले कुछ बोलती लाइन कट गई थी, और वो ही वो मनहूस दिन था जिसने पापा को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उस परिस्थिति का भी अकेले सामना किया था मैंने। पापा का मनपसंद गाना था।

अब मैं बेटी का हक मांगना चाहती थी, जरूरत पड़े तो यूएस तक जाना चाहती थी। मैंने आकाश को फोन लगाया, किसी अमेरिकन व्यक्ति की आवाज थी। जवाब में पता चला कि आकाश रायजादा तो परिवार सहित कहीं चले गए हैं, वो लोग नए अमेरिकन किराएदार थे। वो लम्हा जब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना परिवार, ना प्रैक्टिस, ना नौकरी, ना पैसा। बेटी परी के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर सारे प्रयास विफल हो गए। फिर क्या करती? अपनी नानी के घर शिफ्ट हो गई, पहाड़ों के आगोश में। वहां से अपने आप को संभाला,

छोटे से अस्पताल में मैंने अपने आप को भूलने की कोशिश की। वो दिन और आज का दिन, 18 लंबे साल बीत गए, पर आज उस लड़की को देखकर जैसे सब जिंदा हो गया। दोपहर कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। सामने आसमान के बदलते रंगों को देखती रही मैं, तभी दरवाजे पर खटखट हुई।

खामोशी के तालाब में जैसे किसी ने कंकड़ मार दिया हो। डॉक्टर अवनी रायजादा, अवनी, वो ही गहरी दिलकश आवाज जिसे सुनकर मेरे हृदय के तार गुनगुनाने लगते थे। सामने खड़े थे डॉक्टर आकाश रायजादा। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर लगा बरसों की प्यासी धरती पर ओस की बूंदे पड़ी हो जैसे। अवनी इस बार एक और कदम आगे बढ़ा। आकाश इतने पास थे कि कहां कहां नहीं तलाशा तुम्हें, हर शहर, हर अस्पताल, और तुम यहां हो। तुम्ही ने तो वो कागज भिजवाए थे आकाश, माँ से मेरी बात भी हुई थी। ओह नो अवनी, प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो। ढलते सूरज की रोशनी ने आकाश की आंखों में तैरती बूंदों का पर्दाफाश कर दिया। अवनी, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात तो सुन लो। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने मरने से पहले सब सच बता दिया था मुझे। सर्द हवा के झोंके चल रहे थे और मेरा बदन कांप रहा था जैसे डाली पर सूखा पत्ता थरथरा रहा हो। अवनी, आकाश बोलने लगे, मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे, काश उस समय ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, ये दूरियां ना होती। लेकिन आकाश, तुमने मुझे ओवरसीज कवर भेजा था ना, उसमें चेक था और थे तलाक के कागज। अवनी, मैंने एक चेक पर साइन किया था बस, क्या किसी कागज पर मेरा साइन था? माँ माँ शियाना को पसंद करती थी, उन्होंने कहा कि अवनी बार बार फोन कर पैसों की तंगी के बारे में कहती है, बहस करती है, बस इसीलिए वो चेक भेजा था तुम्हें। पर तुमने कहा था उसे पढ़कर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो तो तलाक के पेपर्स थे। नहीं अवनी, मैंने तुम्हें अपने रिसर्च और नए घर का पता और नंबर भेजा था। आकाश की बातों से बेबसी झलक रही थी। जब वापसी में तुमने तलाक के पेपर्स भेजे तो मैं टूट गया, बहुत गुस्सा आया था तुम पर। 10 साल पहले जब माँ की किडनी फेल हुई तो मौत सामने पाकर माँ ने सब सच सच बता दिया था। उसके बाद तुम्हें पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश की। माँ तुमसे माफी भी मांगना चाहती थी। सर्दी से मेरी आवाज थरथराने लगी। तुम, मैं तो अब परी को लेकर वापस आ गया हूँ इंडिया में। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बदन कांपने लगा।

ठंड बढ़ गई थी। अपनी, हो सके तो मुझे माफ कर दो, गलती मेरी भी थी आकाश। शियाना का नाम सुनकर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरे कांपते हाथों को आकाश ने थाम लिया था। अपनी नूरानी रोशनी बिखेर कर सूरज ढल चुका था और क्षितिज पर अवनी और आकाश गले मिल रहे थे।

0: ये थी कहानी क्षितिज, जिसकी लेखिका थी शीतल शाह।
1: निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती।
0: और अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं

0: हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। इस बीच तनाव बढ़ने के चलते अमेरिका के विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों के लिए नई सुरक्षा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे ये इलाके छोड़ने पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ई भविष्य पेंशन स्वीकृति तथा ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said, the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी की रफ्तार के बीच कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो दिल को सुकून दें और होठों पर मुस्कुराहट ले आए। कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमों की महफिल लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपके बीच, और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, जहाँ हर धुन एक याद है, हर बोल एक एहसास, और हर गीत दिल के बेहद करीब है। तो आइए संगीत के इस खूबसूरत कारवां को शुरू करते हैं, और पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म है काली चरण, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कभी एक ही जबान में नहीं बोलती, कभी आंखों से बात कहती है तो कभी खामोशी से जाहिर होती है, तो कभी ये मोहब्बत धड़कनों में उतर जाती है। रात की तरह, या ये कहा जाए कि चांदनी रात की तरह, प्यार भी धीरे धीरे दिल पर अपना उजाला बिखेरता है। और यकीनन जब दो दिल एक दूसरे को सच में महसूस करने लगते हैं तो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं, एहसास बाकी रह जाते हैं सिर्फ। इन्हीं अनकहे जज्बात, मीठी तड़प और सच्ची मोहब्बत की खुशबू लिए पेश है एक नया, एक ऐसा सदाबहार नगमा जो सदियों से दिल को छूता आया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो?
2: हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
3: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
2: हाँ।
3: ताली भी पिज्जा।

गीत संगीत के कई सारे रूप हैं, प्यार के भी कई सारे रूप हैं। और जीवन में प्यार हो जाता है, कई बार वो प्यार पूर्ण होता है, कई बार अधूरा रह जाता है। वैसे देखा जाए तो हर गली सिर्फ एक रास्ता नहीं होती और हर चौबारा सिर्फ एक आंगन नहीं होता। वहाँ बचपन की हंसी, अपनों की आवाज़ें और अनगिनत यादें बसी होती हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ जगह हमेशा दिल में अपना घर बना लेती हैं, और जब वो यादें आती हैं तो मन भी उसी पुराने आंगन में लौट जाना चाहता है, जहाँ रिश्तों की गर्माहट और अपनापन देख कर हम बड़े हुए, या फिर वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत हुआ करते थे। और इन्हीं खूबसूरत यादों और भावनाओं को समेटा जाता है कुछ गीतों में और नगमों में। कुछ गलियां और चौबारे ऐसे भी होते हैं जहां इश्क पनपता है, प्रेम पनपता है, भले ही वो पूरा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन होता तो वो प्रेम ही है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है प्रेम रोग।

0: कुछ मुलाकातें सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहती कि वे याद बनकर हर आने वाले दिन को खूबसूरत बना दें। कल की मुस्कान, एक नज़र और कुछ अनकही बातें आज भी दिल में वैसे ही महकती रहती हैं। कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। मोहब्बत की यही तो खूबसूरती है कि एक छोटी सी मुलाकात भी उम्र भर की मुस्कान बन जाती है। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं, मैं तमाम दिन का थका हुआ तू तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जाए इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लूं, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफ़र यहीं तक हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का

0: अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोर्धा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। इस बीच तनाव बढ़ने के चलते अमेरिका के विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों के लिए नई सुरक्षा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे ये इलाके को छोड़ने पर विचार करें। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंति चौधरी, सचिन सिवाज और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एथलेटिक्स में 5000 मीटर में भारतीय धावक गुलवीर ने कांस्य पदक जीता। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि शुभम जुएल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasised that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. Out of the 7 affected states, Himachal Pradesh, Odisha and Nagaland had earlier received The first installment of

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप, दिल भी मिला के देखिए किसी से आप, मिलने को रोज तो मिलते हैं यूं तो सभी से आप।

0: आशिक समझ रहे हैं मुझे, दिल की लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप।
1: आ जा के आ गई रुत मस

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। अगला गीत आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले किसी ने बहुत खूब कहा है कि ऐसा बना दिया तुझे कुदरत खुदा की है, ऐसा बना दिया तुझे कुदरत खुदा की है, किस हुस्न का है हुस्न अदा किस अदा की है, अंदाज मुझसे और है दुश्मन से और ढंग, अंदाज मुझसे और है दुश्मन से और ढंग, पहचान मुझको अपनी पराई कजा की है, दुश्मन के घर से चल के दिखा दो जुदा जुदा, ये बांकपन की चाल ये नाजो अदा की है, ऐसा बना दिया तुझे कुदरत खुदा की है, किस हुस्न का है हुस्न

रात सुरमई सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई सुरभि के साथ। जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जलवों ने मचलना छोड़ दिया, पोशाक बहारों ने बदली, फूलों ने महकना छोड़ दिया, जब से वो समंदर पार गया, गोरी ने संवरना छोड़ दिया, और जब प्रेम इश्क मोहब्बत में ऐसी स्थिति आती है तो दिल बस यही पूछता है

जब सावन का मौसम आता है और पहली फुहार धरती को छूती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता बल्कि दिल का मिजाज भी बदल जाता है। भीगी हवाएं, बारिश की खुशबू।

हाथों पर सजी मेहंदी जैसे कि मोहब्बत को एक नया रंग दे रही है। कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है प्यार की मिठास उतनी ही गहरी होती है। और जब सावन की रिमझिम में किसी अपने का साथ मिल जाए तो हर पल खूबसूरत बन जाता है। तो चलिए सुनते हैं इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

रात सुरमई में अब चलते चलते आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम गीत फिल्म का गीत, आवाज़ है अनुराधा पौंडवाल की।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और आप सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए

0: पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने आज बॉन ओपन 2026 में डबल्स का खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम हेइनोनन की जोड़ी को हराया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोर गोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि शुभम जुआल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasised that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. A new strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda yesterday reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. During the meeting, the Minister assessed the preparedness of the National Board of Examinations in Medical Sciences, technology partners and other stakeholders involved in conducting the examination. He was briefed on examination logistics, candidate facilitation measures, the security architecture and the technology-driven interventions introduced for NEET PG 2026. Maharashtra government has initiated an inquiry into the foreign funding received by the Cockroach Janata Party and certain other organizations. Minister of State for Home Pankaj Bhoyer said the investigation is examining how the funds were utilized, while the Enforcement Directorate is also conducting a parallel probe. He added that appropriate action will be taken if the funds are found to have been used for illegal activities. US President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. Kuwait said to

और FM गोल्ड पर आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त हमराही कार्यक्रम में युगल गीतों को सुनवाने के लिए। आवाज़ के साथ तो आपने पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना, साहिर लुधियानवी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, जब आपका कोई चाहने वाला आपके बिना रह नहीं पाता तो बेचैनी ऐसी ही होती है। काश इस दौर में भी आपकी भावनाओं को समझने वाले साथी ऐसे ही मिलें।

सच में जब दिल उदास होता है ना, तो कोई ना कोई ज़रूर आसपास होता है, चाहे प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई कण भी क्यों ना हो। आपने ये गीत सुना सीमा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और शारदा का गाया हुआ। गुलजार ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आंधी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ आपको सुनवा रहे हैं। गुलजार ने गीत को लिखा, संगीत से संवारा है आरडी बर्मन ने।

दोस्तों, बहुत बार आप जो भी गीत सुनते हैं उसकी धुन पहचान कर या उसके बोल देखकर जान जाते हैं कि भाई तो इस फिल्म से था, और आपने सही पहचाना, प्यासा सावन फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। अगला गीत आप सुनेंगे मस्ताना फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। आनंद बख्शी ने गीत को रचा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मान लो अचानक से आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपको बहुत खुशी मिले, तो वो प्रतिक्रिया आपके चेहरे पर भी आएगी और आप कहेंगे वाह।

गाया हुआ शैलेंद्र की बोल थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अनुराग फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना है और सचिन देव बर्मन का संगीत।

आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड, और एफएम गोल्ड में गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग, और कार्यक्रम चल रहा है हमराही।

दोस्तों, बहुत बार आपसे कोई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनका साथ पाकर आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं, होता है ना ऐसा, और फिर उनका साथ छोड़ने का मन भी नहीं करता। कभी एक दिन ना मिले तो ऐसा लगता है पता नहीं कुछ अधूरा रह गया है।

में दोस्तों, जिनका साथ अच्छा लगे आपको उनका साथ छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़।

दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कार्यक्रम में, यानी हम रही कार्यक्रम में आपको आखिरी गीत सुनवाने का। जुआरी फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ गीत आपको सुनवा रही हूँ। आनंद बख्शी की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं,

0: जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 में मौजूदा चैंपियन भारत ग्रुप बी में मालदीव और पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा। ये टूर्नामेंट इस साल 4 से 17 नवंबर तक ढाका में खेला जाएगा। भारत अपने खिताब को बचाने के लिए 5 नवंबर को मालदीव के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा और फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग ज्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasised that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well. Union Minister for Health and Family Welfare, Jagat Prakash Nadda, yesterday reviewed the preparedness for the National Eligibility Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. Maharashtra government has initiated an inquiry into the foreign funding received by the Kokrut Janta Party and certain other organizations. Minister of State for Home Pankaj Bhoyer said the investigation is examining how the funds were utilized, while the Enforcement Directorate is also conducting a parallel probe. He added that appropriate action will be taken if the funds are found to have been used for illegal activities. US President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. Kuwait said today that it intercepted and destroyed hostile drones targeting vital facilities, and another commercial vessel came under attack in the Strait of Hormuz. Firefighters contained a massive wildfire in southwestern France today, allowing nearly 1,98,000 people to return home after one of the country's largest peacetime evacuations, even as new fires triggered fresh evacuations in southern France and Greece. India climbed to fourth place in the Commonwealth Games.

और अब 4:10 और 55 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों का आनंद उठाने के लिए मैं फिर से आ गई हूँ, आपकी दोस्त वंदना चौक।

दोस्तों, वाकई में ही ये ज़िंदगी तो प्यार से चलती है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसा करते हैं। ये गीत आपने सुना सौतन फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। और अब अगली रचना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और अरुणिमा कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सफ़र फिल्म से, मन्ना डे का गाया हुआ, इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: दोस्तों, बहुत सारे गीत हमारी ज़िंदगी में बहुत से संदेश लेकर आते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिस तरह एक चींटी आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और एक दिन वो रास्ते को पा ही लेती है। और गीतों को सुनवाएंगे, पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सीता और गीता, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आशा भोसले और मन्ना डे का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना, फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है। राजा मेहती अली खान की रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

प्यार बांटते रहते हैं और फिर प्यार हो ही जाता है। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम सब उस्ताद हैं फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ, असद भोपाली की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

गीत गाता चला। इस फिल्म से आपने गीत सुना जसपाल सिंह की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। दोस्तों, हम आपसे पल भर के लिए बात करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और हमें भी, और ऐसे ही जीवन में रिश्ते पल भर में दूर हो जाते हैं, और अगर मिठास हो तो पल भर में उन्हें नजदीक आके समय भी नहीं लगता।

कभी कभी इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मुकेश का गाया हुआ, साहिर लुधियानवी का गीत था और धुन तैयार की थी खयाम ने। कार्यक्रम में अगली और आखिरी पेशकश आप सुनेंगे इस गीत के माध्यम से, मेरी जंग फिल्म से शब्बीर कुमार की आवाज़ है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर कदम पर आपको एक नया मकाम हासिल होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है।

दोस्तों, और इस जंग में हमें जीतना ही होगा। इसके साथ ही आज का रूनीमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने बैठक में परीक्षा को सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित तरीके से कराने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक है। परीक्षा एक ही पाली में लगभग 340 शहरों और 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है।

दोस्तों सुबह हो चुकी है और अब कार्यक्रम भोर सुहानी। इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए मैं आपकी दोस्त वंदना चूक।

सच में कौन है किसी का सिवाय उसकी, और वो बैठा है सबका पालनहार। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में जावेद, आइए आपने रचना सुनी, और जावेद अख्तर की रचना थी और ए आर रहमान का संगीत। अगला गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं सुषमा श्रेष्ठ और साथियों के आवाज में। साहिल लुधियानवी ने गीत को रचा है और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

अरब अगली रचना पुकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और ए आर रहमान का संगीत। दोस्तों, ईश्वर के लिए कहना चाहूंगी कि तुझ पर ही तो भरोसा है और फिर तूने कभी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया। विपरीत परिस्थितियां भी आई लेकिन तूने हमेशा अपने आप ही संभाला। तभी तो ये जीवन सौंप कर मन को धैर्य मिलता है।

0: जी मैं एक
1: और अब अगली रचना भोर सुहानी कार्यक्रम में गोपी फिल्म से। बहुत सी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं जो बहुत पहले ही कह दी गई थी, और जब आज सब सामने आती हैं तो लगता है कि वाकई में ही ये सब बातें व्यवहारिकता की हैं।